मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ से, और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि तदनुसार 6 जून सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक

0: अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समुस्वर में ये देश गान। शब्द रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की।

कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है हरिओम शरण और नंदनी शरण के स्वर में ये प्यारा सा भजन। शब्द रचना है पीटी किरण मिश्रा की।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम भजन अनुराधा पौंडवाल और समूह के स्वर में। संगीत निर्देशन है दिलीप और समीर सेन का। शब्द रचना है बलबीर निर्दोष, रानी मलिक और जेके सतपाल की।

0: इस प्यारे से भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब से कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का विचार शब्दों में छिपे एहसास विषय पर। वाचन एवं संकलन है पूनम का।
1: केवल अक्षरों का मेल नहीं होते हैं, वे मनुष्य के हृदय की आवाज होते हैं। इंसान अपने मन की भावनाओं, दर्द, प्रेम, खुशी और उम्मीद को शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त करता है। कभी कभी जो बातें आंखें नहीं कह पाती वह शब्द कह जाते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वह हारे हुए दिल को संभाल सकते हैं और खुशहाल मन को आंसू तक दे सकते हैं। वास्तव में शब्दों में अनगिनत एहसास छिपे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जब माँ अपने बच्चे को प्यार से पुकारती है तब उसके शब्दों में ममता का सागर छिपा होता है। जब पिता अपने बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने की सीख देते हैं तब उनके शब्दों में अनुभव और चिंता दोनों दिखाई देते हैं। दोस्ती में बोले गए कुछ साधारण शब्द भी जीवन भर याद रह जाते हैं क्योंकि उन शब्दों में अपनापन छिपा होता है। इसी तरह प्रेम में कही गई छोटी सी बात भी दिल को गहराई से छू जाती है। शब्दों का संबंध केवल आवाज से नहीं बल्कि हजारों भावनाओं से होता है। कभी कभी इंसान अपने दुख को शब्दों में ढालकर मन का बोझ हल्का कर लेता है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तब डायरी के पन्नों पर लिखे गए शब्द उसके सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। वे शब्द उनके दर्द को समझते हैं और उन्हें सुकून देते हैं। साहित्य की दुनिया में भी शब्दों में छिपे एहसासों का सबसे सुंदर उदाहरण है। कवि लेखक अपने शब्दों के माध्यम से ऐसी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं जिन्हें पढ़कर हर व्यक्ति स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समय के साथ भी जीवित रहते हैं। कई बार किसी अपने के बोले हुए शब्द वर्षों बाद भी याद आते हैं और दिल को छू जाते हैं। एक शिक्षक की प्रेरणा, दादी नानी की कहानियाँ, माँ की डांट या किसी प्रिय व्यक्ति का दिया हुआ हौसला, ये सब शब्द बनकर स्मृतियों में बस जाते हैं। इंसान बदल सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन शब्दों में छिपे एहसास ही हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। शब्दों में मरहम लगाने की भी शक्ति होती है। जब कोई दुखी होता है और कोई वहाँ प्रेम से कहता है सब ठीक हो जाएगा तब ये छोटे से शब्द उसे नई ताकत दे देते हैं। कभी कभी एक मीठा शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। वहीं पर कठोर शब्द, कटुता से भरे शब्द इंसान के मन को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं। आज के समय में लोग अपने भावनाओं को छिपाने लगे हैं। चेहरे पर मुस्कान तो होती है लेकिन मन के भीतर कई दर्द छिपे रहते हैं। ऐसे में शब्द ही वे माध्यम बनते हैं जिनसे मन की सच्चाई बाहर आती है। एक कविता, एक चिट्ठी, एक संदेश या एक गीत केवल शब्द नहीं होते हैं बल्कि किसी के मन के एहसास होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को सच्चाई से शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है तब वह सीधे दूसरों के दिल तक पहुंच ही जाते हैं। प्रेम में शब्दों का विशेष महत्व होता है। प्रेम केवल महसूस नहीं किया जाता बल्कि उसे व्यक्त भी किया जाना आवश्यक होता है। कई बार प्रेम से बोले गए शब्द किसी के दिल को खुशियों से भर देते हैं तो वहीं पर चुप्पी कई बार रिश्तों में दूरियां ले आती हैं। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सच्चे और मधुर शब्द बहुत आवश्यक हैं। शब्द केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि मानव का व्यक्तित्व भी दर्शाते हैं। जिस व्यक्ति के शब्द विनम्र और मधुर होते हैं वह सभी के दिलों में जगह बना लेते हैं। मीठी वाणी सभी के हृदय को, रिश्तों को जोड़ती है। इसलिए हमारे शब्दों में प्रेम, सम्मान और संवेदनशीलता का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि अच्छे शब्द दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं के मन को भी शांति देते हैं। कभी कभी खामोशी भी शब्दों से अधिक बोलती है। चेहरे की उदासी, मन की बेचैनी बहुत कुछ कह देती है लेकिन इन्हीं भावनाओं को जब शब्दों का सहारा मिलता है तब वे अधिक गहराई से महसूस होती हैं। आज के परिवेश में बातचीत का तरीका बदल गया है। लोग संदेशों के माध्यम से जुड़ने लगे हैं लेकिन माध्यम कोई भी हो भावनाएं आज भी शब्दों के सहारे ही व्यक्त होती हैं। एक छोटा सा शब्द, अपना ध्यान रखना, किसी के लिए बहुत मायने रख सकता है। यह बताता है कि शब्दों की महत्ता कभी कम नहीं होती। शायद यही कारण है कि लोग गीतों, कविताओं और कहानियों

0: कहानियों में अपने जीवन की झलक ढूंढ लेते हैं। शब्द दिलों को जोड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का विचार, शब्दों में छिपे एहसास विषय पर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है अनुराधा पौड़वाल का। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहरी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षणभर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर था अनुराधा पौंडवाल का, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है शिमला मिर्च की खेती लाभकारी।
1: शिमला मिर्च की उन्नत खेती। सब्जियों में शिमला मिर्च की खेती का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसको ग्रीन पेपर, स्वीट पेपर, बेल पेपर आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। आकार एवं तीखापन से यह मिर्च से भिन्न होता है। इसके फल गूदादार, मांसल, मोटा, घंटीनुमा, कहीं से उभरा तो कहीं से नीचे दबा हुआ होता है। शिमला मिर्च की लगभग सभी किस्मों में तीखापन अत्यंत कम या नहीं के बराबर पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए तथा सी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि किसान इसकी खेती उन्नत व वैज्ञानिक तरीके से करे तो अधिक उत्पादन एवं आय प्राप्त कर सकता है। जलवायु, यह नर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः शीत ऋतु में तापमान 100 सेल्सियस से अक्सर नीचे नहीं जाता एवं ठंड का प्रभाव बहुत कम दिनों के लिए रहने के कारण इसकी वर्ष भर फसल ली जा सकती है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है। ठंडे मौसम में इसके फूल कम लगते हैं। फल छोटे, कड़े एवं टेढ़े मेढ़े आकार के हो जाते हैं तथा अधिक तापक्रम होने से भी इसके फूल एवं फल झड़ने लगते हैं। भूमि, इसकी भूमि के लिए अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6 से 6.5 हो सर्वोत्तम माना जाता है। वही बलुई दोमट मृदा में भी अधिक खाद डालकर एवं सही समय उचित सिंचाई प्रबंधन द्वारा खेती किया जा सकता है। जमीन के सतह से नीचे क्यारियों की अपेक्षा इसकी खेती के लिए जमीन की सतह से ऊपर उठी एवं समतल क्यारियां ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। उन्नत किस्में, शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों में अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, किंग ऑफ नॉर्थ, कैलिफोर्निया वंडर, अर्का बसंत, ऐश्वर्या, अलंकार, अनुपम, हरी रानी, पूसा दीप्ति, भारत ग्रीन गोल्ड, हीरा, इंदिरा प्रमुख हैं। खाद एवं उर्वरक, खेत की तैयारी के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद डालना चाहिए। आधार खाद के रूप में रोपाई के समय 60 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम स्फूर एवं 40 से 60 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। 60 किलोग्राम नत्रजन को दो भागों में बांटकर खड़ी फसल में रोपाई के 30 एवं 55 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़कना चाहिए। नर्सरी तैयार करना, 3×1 मीटर आकार के जमीन की सतह से ऊपर उठी क्यारियां बनाना चाहिए। इस तरह से 5-6 क्यारियां 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त रहती हैं। प्रत्येक क्यारी में 2 से 3 टोकरी गोबर की अच्छी सड़ी खाद डालना चाहिए। मृदा को उपचारित करने के लिए 1 ग्राम बाविस्टीन को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लगभग 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगाने के लिए पर्याप्त रहता है। बीजों को बोने के पूर्व थाइरम, कैप्टान या बाविस्टीन के 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके कतारों में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की दूरी से लकड़ी या कुदाली की सहायता से 1 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी में बुआई करना चाहिए। बीजों को बोने के बाद गोबर की खाद व मिट्टी के मिश्रण से ढककर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करना चाहिए। यदि संभव हो तो क्यारियों को पुआल या सूखी घास से कुछ दिनों के लिए ढक देना चाहिए। रोपण एवं दूरी, सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा 4-5 पत्तियों वाला पौध जो कि लगभग 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाता है रोपण के लिए प्रयोग करें। पौध रोपण के 1 दिन पूर्व क्यारियों में सिंचाई कर देना चाहिए ताकि पौध आसानी से निकाला जा सके। पौध को शाम के समय मुख्य खेत में 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। रोपाई के पूर्व पौध की जड़ को बाविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा डुबा कर रखना चाहिए। रोपाई के बाद खेत की हल्की सिंचाई करें। शिमला मिर्च की फसल को कम एवं ज़्यादा पानी दोनों से नुकसान होता है। यदि खेत में ज़्यादा पानी का भराव हो गया हो तो तुरंत जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। मृदा में नमी कम होने पर सिंचाई करना चाहिए। नमी की पहचान करने के लिए खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर लड्डू बनाकर देखना चाहिए। यदि मिट्टी का लड्डू आसानी से बने तो मृदा में नमी है, यदि न बने तो सिंचाई कर

0: देना चाहिए। सामान्यतः गर्मियों में एक सप्ताह एवं शीत ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। निराई गुड़ाई, रोपण के बाद शुरू के 30 से 45 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना अच्छे फसल उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक है। कम से कम दो निराई गुड़ाई लाभप्रद रहती है। पहली निराई गुड़ाई रोपण के 25 एवं दूसरी 45 दिन के बाद करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय था शिमला मिर्च की खेती लाभकारी। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको आज के मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं।

प्रातःकाल ठीक 7 बजे आप सुनेंगे सरगुजा लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल, साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 7:15 पर। और जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का प्रसारण समय होगा सुबह 8:30 पर और कार्यक्रम बातों बातों में आप सुन सकेंगे सुबह के ठीक 9 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथियों, आप अपना प्रिय कार्यक्रम गुंजन सुन सकेंगे आज सुबह 9:15 पर और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने का आनंद आप ले सकेंगे सुबह के ठीक 10 बजे।

श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन के 11:05 पर, और श्रोताओं की ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का आनंद आप ले सकेंगे 1:40 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग आप सुन सकेंगे 12:00 और जफर हुसैन खां बदायूनी और साथियों के स्वर में कव्वालियाँ का प्रसारण समय होगा 12:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण होगा 1:05 पर, और शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन आज सजेगा तय समय 1:10 पर। साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा 5:00 और युवा श्रोता कार्यक्रम युवावाणी सुन सकेंगे 5:30 पर। साथ ही ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय 7:20 पर। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप ले सकेंगे 5:05 पर, और कार्यक्रम विचार बंधु का पुनः प्रसारण होगा 6:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली का आनंद आप ले सकेंगे 6:20 पर। साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे 7:05 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे 8:00।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर और अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 9:30 पर। साथ ही संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम ओकल ख्याल आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10 बजे। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत।

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं बदन राम और साथियों के स्वर में ये देवी भजन।

0: जय सिंह पेकरा और साथियों के स्वर में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुंजे जंगल का अंतिम लोकगीत।
1: ओरे

भिनसरिया गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:15 हुए हैं। लीजिए पेश से सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर और संगीत निर्देशन में ये गजल। शब्द रचना है हसरत जयपुरी और रहनुमा के।

लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला गजल अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर और संगीत निर्देशन में। सब दृश्य है आमिक हनफी की।

0: इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। सुशासन तिहार 2026 6 को विकासखंड लुंड्रा के रीरी में 19 ग्राम पंचायतों हेतु जन समस्या निवारण शिविर का होगा आयोजन। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत 6 को विकासखंड लुंड्रा के रीरी शिविर स्थल ग्राम पसेना आम बगीचा के पास में शिविर लगेगा, जिसमें 19 ग्राम पंचायतों नागम रीरी, बरडी, पटोरा, अगासी, सहनपुर, गुजरवार, किरकीमा, कोइलारी, गगोली, चितरपुर, सपड़ा, रवि, डुमरडी, घघरी, कोरंधा, करेसर, लुंड्रा, चिरंगा के ग्रामीण अपनी मांगों एवं शिकायतों के संबंधित आवेदन देंगे। शिविर प्रभारी अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लुंड्रा एवं सहायक प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लुंड्रा होंगे। बता दें, शासन के निर्देशानुसार जन शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने तथा आम जनता को सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित रूप से सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत 10 तक जिले में शिविर आयोजित होंगे। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा की पहली पेशकश फिल्म लैला मजनू से। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, संगीत निर्देशन है मदन मोहन का, शब्द रचना है साहिर की।

विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 7 जून को साइकिल रैली का होगा आयोजन। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडेस ऑन साइकिल अभियान का आयोजन विश्व साइकिल दिवस 7 जून 2026 को प्रातः 7 बजे से किया जा रहा है। साइकिल रैली घड़ी चौक से प्रारंभ होकर देवीगंज रोड, संगम चौक, महामाया चौक से होकर गुरु नानक चौक से, लरंग साइज चौक से, आकाशवाणी चौक से दुर्गा

मंदिर गेट होते हुए गांधी स्टेडियम परिसर में संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य आमजन में फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता एवं नियमित शारीरिक गतिविधियों के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है। उन्होंने आयोजन में नगर के लोगों, अधिकारी कर्मचारी, खेल संघों, युवा संगठन एवं विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने अपील किया। प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के निर्देश के परिपालन में प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना जिला कलेक्ट्रेट के कंपोजिट बिल्डिंग के कक्ष क्रमांक 20 में किया गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का नंबर 0777422150 एवं 0777422505 है, जिसमें संपर्क कर सूचना 1 जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक 24 घंटे दी जा सकती है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतु नोडल अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी, अधीक्षक भू अभिलेख होंगे। इसके साथ ही कक्ष के सफल संचालन हेतु अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा की अगली पेशकश फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। आवाज मोहम्मद रफ़ी की, धुन दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल का।

जिला जनसंपर्क कार्यालय मनेन्द्रगढ़ श्रीमरी भरतपुर नवीन राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन की नई व्यवस्था लागू। नवीन राशन कार्ड सदस्य जोड़ने और नाम विलोपन की सुविधा सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नया रायपुर द्वारा नवीन राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने तथा सदस्य विलोपित करने संबंधी आवेदनों को अब सेवा सेतु पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नागरिक अब सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में दर्ज जानकारी एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का परीक्षण और सत्यापन छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार नवीन राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति के पश्चात जोन अथवा जनपद कार्यालय में ऑनलाइन जनरेट राशन कार्ड की पीडीएफ प्रति पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को अपने परिवार के मुखिया एवं कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का EKYC अनिवार्य रूप से कराने के लिए प्रेरित किया जाए। EKYC संबंधित उचित मूल्य दुकान में स्थापित EPOS मशीन अथवा फेस EKYC के माध्यम से कराई जा सकेगी। यह व्यवस्था राशन कार्ड संबंधित सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी तथा समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जिला जनसंपर्क कार्यालय बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 8 जून को। संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 8 जून 2026 को समय सीमा की बैठक पश्चात आयोजित की गई है। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथियों, आइए चलते हैं हमारे अगले गीत की ओर, जिसे फिल्म शर्मीली से लिया गया है, जिसमें नीरज की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है HD बर्मन ने और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

छात्रावास एवं आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग संचालित स्वास्थ्य, तन स्वास्थ्य, मन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिले के विभागीय छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत 7 छात्र छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिन क्षेत्रों में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ के संचालित विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं शर्तों के अनुसार MBBS, BAMS तथा BHMS योग्यताधारित चिकित्सकों से वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक चिकित्सक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 17 जून 2026 को सायं 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला मुख्यालय बलरामपुर में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों

पर विचार नहीं किया जाएगा। साथियों आइए सुनते हैं इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा की अंतिम पेशकश फिल्म सफर से। आवाज हेमंत नायडे की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, गीतकार हैं इंदीवर।

0: इस गीत के साथ ही जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा यहीं समाप्त होता है।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ही आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है।

0: मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
8: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना

0: पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें सुनते हैं मस्तिष्क से संबंधित रोग मिर्गी कारण लक्षण एवं उपचार। इस विषय पर डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है रमा शंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब हम अपने शरीर के अंगों की बात करते हैं तो हमारा जो सिर होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें लगने वाले आघात, चोट से कभी कभी हमें काफ़ी तकलीफ होती है और सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने सिर पे लगने वाले चोटों से हमेशा सावधान रहें। और श्रोताओं, कुछ बीमारियों का कभी सामना करना पड़ता है जिनका संबंध सीधे मस्तिष्क या हमारे सिर से होता है, और कुछ बीमारियां बाहरी तौर पे होती हैं, कुछ अंदरूनी तौर पे। तो मस्तिष्क से संबंधित कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनके लक्षण क्या है और उनके क्या उपचार हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी को, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर उमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, रायपुर।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम अपने मस्तिष्क की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी बीमारी जो है प्रमुख तौर पर देखी जा सकती है।
1: जहाँ तक मस्तिष्क की बात है, बहुत ही वृहद संरचना होती है शरीर की, बहुत बड़ा अंग होता है मस्तिष्क, लेके पूरा स्पाइन तक, साथ में हाथ और पैरों में फैले हुए नसों तक का पूरी बीमारी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के अंदर कवर होती है। मस्तिष्क रोग में मुख्य मुख्य रूप से सबसे कॉमन सामान्य रूप से जो समाज में फैली है बीमारी, उसमें से एक है लकवा या स्ट्रोक। दूसरा प्रमुख बीमारी इसके अंदर आता है वो है फिट्स या एपिलेप्सी, या जिसको दूसरी भाषा में मिर्गी बोला जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है सिर दर्द या मस्तिष्क के अंदर दर्द। इसके अंदर बहुत कॉमनली है माइग्रेन हेडेक है। मुख्य बीमारी के रूप में बोलूँ तो हाथ पैर में सुन्नता या झुनझुनी, सर्वाइकल या गले में दर्द, और उसके बाद अगला है कमर दर्द। ये प्रमुख मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो मस्तिष्क रोग के अंदर आती हैं, और बहुत सारे टाइप से होते हैं समस्याएं, लेकिन ये जो 5-6 हैं ये मुख्य रूप से समाज में बृहद रूप से फैला हुआ है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही वृहद रूप में पाया जाने वाला मस्तिष्क से संबंधित रोग है मिर्गी।
1: जी,
0: तो इसके बारे में बताइए कि मिर्गी के दौरे क्या होते हैं।
1: मिर्गी समाज में मतलब प्रमुख रूप से फैला हुआ बीमारी है। ऑलमोस्ट हम बोला जाए कि 600-700 लोगों में एक किसी को मिर्गी एपिलेप्सी की समस्या हो सकती है। यह बहुत ही कॉमन है, खासकर हमारे इंडिया और छत्तीसगढ़ बेल्ट में बहुत ही कॉमन है। मतलब ये मिर्गी ऐसा समस्या है कि हर गांव जाओ तो कम से कम आपको 8-10 मरीज मिल ही जाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से ये होता है, जैसे अचानक से हाथ पैर में अकड़न आना, हाथ पैर का मुड़ जाना, चेहरे का ऊपर की ओर जाना, आंखें ऊपर चले जाना, मुंह को चबा देना और साथ साथ मुंह से खर्राटे की आवाज़ आना और मुंह से झाग आना। ये सब स्थिति होने के बाद मरीज को कुछ टाइम के लिए बेहोशी आता है, और बेहोश होने के बाद मरीज गिर जाता है।
0: जी,
1: ये स्थिति लगभग 1-4 मिनट 5 मिनट तक ही बनी रह सकती है। ये समाज में जो फैला मुख्य रूप से जो अपन देख पाते हैं ये वो समस्याएं हैं। इसके और दूसरी समस्याएं भी होती हैं जो मिर्गी का ही रूप है, लेकिन इतना वृहद रूप से शरीर में सिम्टम नहीं दिखाता। उनमें एक है कि अचानक से कुछ क्षण के लिए कोई एक हाथ पैर कमज़ोर हो जाना, या फिर उस हाथ या पैर में कुछ टाइम के लिए एबनॉर्मल मोमेंट्स होना, अपने आप हिलना। और तीसरा एक टाइप होता है जिसमें कि कुछ टाइम के लिए अपन अपने रिश्तेदार या फिर दोस्त यार किसी को पहचान नहीं पाते। ये कुछ होता है ओनली 10-15 सेकंड्स के लिए। अचानक से हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, जिस माहौल में हैं, उससे अपन कट ऑफ हो जाते हैं।
0: जी,
1: ये कुछ कॉमन समस्याएं हैं एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी के अंदर आती हैं, एपिलेप्सी के प्रकार हैं।
0: जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम मिर्गी की बात करते हैं तो इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं।
1: मिर्गी के लगभग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से एक तो है, जैसे किसी मरीज को लकवा हो गया, लकवा होने के बाद ब्रेन रिकवर कर रहा है तो सीजर आ सकता है, या फिर मिर्गी आ

0: सकता है। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद में जो चोट लगती है सिर में, उसके बाद वो स्कार बनता है, वहाँ से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और जैसे ब्रेन में टीबी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये एक प्रमुख कारण है उसका भी। कुछ कंडीशन में जेनेटिक्स में होता है, जेनेटिकल कंडीशन है, फैमिली में चलती आती रहती है, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। और वयस्क लोगों में खासकर एक्वायर्ड या फिर जो हम बाद में प्राप्त करते हैं वो कॉमन कारण होता है। जैसे मैंने बताया, इस लकवा हो गया, कोई चोट लग गया। और आजकल प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, जैसे यंगस्टर्स में देखते हैं खासकर, कि नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। अल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रहा है, इन सब से भी मिर्गी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जो मरीज या फिर जो इंसान अल्कोहल के प्रति डिपेंडेंट हो गया है, उसको लंबे टाइम तक अल्कोहल का सेवन कर रहा है, लंबे टाइम तक स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन कर रहा है, तो बॉडी उसके अभ्यस्त हो गया, हमारा शरीर उसके अभ्यस्त हो चुका है। जब हम अचानक से कुछ दिन के लिए अधिक मात्रा में लिए, फिर अचानक से एक दिन कम कर दिए, तो ये एकदम से दौरा आने का कारण बन सकता है। तो खासकर यंगस्टर्स में जो अधिकतम टाइम जो कंजप्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, निकोटीन स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें मिर्गी आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाती हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि बिना किसी चोट के भी, जैसे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं हो, उन छोटी उम्र के बच्चों को भी देखने को मिलती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है?
0: जनरली ऐसे में ब्रेन के अंदर ही अंदरूनी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। कई बार जो बच्चा पैदा होता है, उसके उस टाइम जब पैदा हुआ तब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ग्लूकोज कम हो गया, या फिर ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, तो या फिर बच्चों में कॉमनली देखा जाता है कि बुखार आया, तेज बुखार आया, 103-104 डिग्री फीवर आया है, उसके बाद में उसको झटका आ गया। तो बच्चों में ये बहुत कॉमन रहता है, और उसको बोलते हैं अपन फेब्राइल सीजर। तो बच्चों में बिना कुछ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी के भी सीजर या दौरे आ सकते हैं। कुछ कारण रहते हैं जो जन्मजात ब्रेन में बनावट के कारण भी, नॉर्मल बनावट है या फिर थोड़ा डिफेक्ट है, तो उस कारण से भी वो सीजर का एक कारण बन सकता है। लेकिन मुख्य रूप से बच्चों में या फिर मिडिल एज के लोगों में इसका कारण अधिकांश समय पता नहीं चल पाता। लेकिन फिर भी हमको उसको आगे इन्वेस्टिगेशन करना है, आगे जाँच करना है, इसके लिए हम उनको प्रमोट करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी थी ये, और समाज में मिर्गी के लिए कई कई तरह की बातें होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुनें।
0: जैसे मेरे फेवरेट सॉन्ग तो आशा ताई द्वारा गाया हुआ गाना है, उनमें से एक मुझे बहुत ही पसंद आता है, वो है इन आंखों की मस्ती।
1: तो बहुत अच्छा गीत है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए, सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी से, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, और बात कर रहे थे मस्तिष्क संबंधी कुछ विकारों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम इस गीत के पहले बात कर रहे थे, मस्तिष्क में होने वाली एक जो बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, उसके कारण उनके लक्षण क्या होते हैं? तो डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को मिर्गी होता है, तो समाज में इसके क्या क्या तथ्य हो सकते हैं?
1: मुख्य रूप से जो जादू टोना वाला पहले भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उनके अंदर भी ये अभी भी आता है। अधिकांश लोग को लगता है कि ये कोई बीमारी ना होगी, कोई जादू टोना का प्रभाव है क्या, ऐसा लगता है। और लोग ऐसा मिर्गी के दौरा आते हुए भी उनको बीमारी को अनदेखा करते हैं, मरीज के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कहीं पर देखा जाता है कि उनको अननेसेसरी टॉर्चर या फिर झाड़ फूँक के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे उनको फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता है। और मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि जैसे मरीज को किसी और के सामने दौरा आ गया, तो उनका जो प्रचलित तरीका है इलाज करने का या प्रचलित तरीका है कंट्रोल करने का, उसके अंदर वो लोग उसको लाइक चम्मच है, सॉलिड चीज़ें, उसको मुंह में डाल देते हैं, जिस कारण मरीज को फिजिकल ट्रॉमा या फिर उनके दांतों को चोट लगना, जीभ पे चोट लगना बहुत कॉमन हो जाता है। और एक और होता है इसमें, जब मिर्गी से जो आदमी प्रभावित है उसका जब शादी उम्र आता है, तो सबसे ज़्यादा उसको यहाँ पे चीज़ों को झेलना पड़ता है या फिर सामना करना पड़ता है बोलूँगा। जैसे शादी के टाइम आया, शादी में उसको सामने वाले को उसने बीमारी के बारे में बताया, तो सब लोग को ये लगता है कि ये लाइलाज बीमारी है और ये पता नहीं कब से प्रभावित है, ठीक होगा कि नहीं होगा, आगे जीवन में क्या और प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सबको देखते हुए उसके लिए बहुत सारा चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीज जो मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, तो ऐसे जो मरीज मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, वो हमारी तरह नॉर्मल आदमी है, कुछ टाइम के लिए उनके ब्रेन में

0: करंट पैदा हो रहा है और वो उसको दौरे आ रहे हैं, कोई लंबी बीमारी है नहीं उसके लिए, कुछ फ्यू मिनट्स या सेकंड्स के लिए आएगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये एक टाइप से भ्रांति है जो प्रमुख रूप से समाज में है।
1: यदि कोई व्यक्ति एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है तो हमें किन चीज़ों से उन्हें दूर रखना चाहिए?
0: जैसे अपन देखते हैं कोई मरीज एक रास्ते में चल रहा है, अपना दैनिक कार्य कर रहा है, उस दौरान उसको कभी भी सीजर आ सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो मेरा पहला दायित्व

0: अपन देखते हैं कोई मरीज एक रास्ते में चल रहा है, अपना दैनिक कार्य कर रहा है, उस दौरान उसको कभी भी सीजर आ सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो मेरा पहला दायित्व तो बनता है उसको प्लेन जगह पे, सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे कोई धारदार चीज़ ना हो, कोई उबड़ खाबड़ जगह ना हो, वहाँ पे तुरंत स्विच करना। वहाँ पे ले जाते ही मुझे उनको एक तरफ करवट लेके लेटाना रहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ताकि जो मुंह में लार बन रहा है या फिर जो अधिकतम सिक्रीशन आ रहा है मुंह में, वो फेफड़े में ना जाए। तो उससे उसका सांस लेने का तरीका ठीक हो जाएगा, एस्पिरेशन जो अपन लार बनता है वो फेफड़े में जाने की संभावनाएं रहती हैं वो कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने का चांस रहता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और जो भी दौरे आते हैं वो लगभग लगभग 80-90% केसेस में कुछ आधा मिनट 1 मिनट के अंदर ही शांत हो जाते हैं अपने आप। तो हमको ऐसे मरीजों को बाहर के तौर पे, कि उसको बाहर कोई नुकीली चीज़ से चोट ना लगे, उसके लिए उनको सेफ जगह पे ले जाना रहता है। जैसे कोई पानी वाली जगह पे आ गया किसी को, तो मेरा पहला दायित्व तो है कि उसको तुरंत मैं पानी की जगह से थोड़ा दूर ले जाऊँ, जहाँ पे प्लेन जगह हो, जहाँ पे चोट लगने की संभावनाएं कम हो। आग वाली जगह पे आ गया तो वहाँ से थोड़ा दूर ले जाऊँ, बिकॉज ऐसे मरीज कुछ टाइम के लिए अपना पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं, उनका खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। तो उनको पहले अपने सेफ जगह पे शिफ्ट करें।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें जो एक सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब कोई रोग होता है तो उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं इसके, जो उसे बढ़ा सकते हैं, तो क्या मिर्गी के भी ऐसे कुछ ट्रिगर्स या
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: ऐसे
0: जी
1: कारक होते हैं जिनसे इस रोग के बढ़ने की संभावना होती है?
0: मिर्गी के रोग में ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत ही बहुत ज़्यादा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि हम उनको थोड़ा सावधानी बरत के अवॉइड कर सकते हैं। इनमें मुख्य कारण रहता है डॉक्टर द्वारा जो दवाई एडवाइस किया गया है उसको आप फिक्स टाइम पे लीजिए, जिस डोज में बोला गया है उस डोज में लीजिए और फिक्स टाइम पे लीजिए। उससे क्या है, बॉडी में दवाई का लेवल बना रहता है, तो आगे मिर्गी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और दूसरा चीज़ ये कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है नींद का कम होना। जो नॉर्मल एडवाइस किया गया नींद है कि अपन रात को टाइम से सोएं और टाइम से उठें, उसमें लगभग 7-8 घंटे का प्रॉपर निद्रा का टाइम रहता है, रात में साउंड स्लीप बोलते हैं। तो अपन 7-8 घंटा प्रॉपर स्लीप लें, दिन में 1 घंटा नैप ले सकते हैं, ये कॉमन हो गया। उसके बाद जनरली अपन जो मिर्गी के पेशेंट हैं उनको सलाह देते हैं कि फास्टिंग अवॉइड करें, खाली पेट ज़्यादा टाइम तक ना रहें, उससे भी मिर्गी ट्रिगर हो सकता है। और तीसरा, अपने पहले भी बात करी, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग से भी इसका ट्रिगर होता है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: किसी भी तरह से स्ट्रेस लेते हैं उससे भी अपना ट्रिगर हो सकता है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करना बेहतर रहता है।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसके इलाज की बात करें
0: जी,
1: तो इसके क्या इलाज हो सकते हैं और कितने कारगर होते हैं?
0: मिर्गी अभी के समय में लगभग लगभग पूर्ण रूप से मिर्गी को ठीक कर सकते हैं। हमें बेसिक अपने को चाहिए तो मरीज को दवाई के प्रति एडहेरेंट रहना पड़ेगा, प्रॉपर दवाई को टाइम से लेना पड़ेगा। और इसमें मेन इलाज के तौर पे होता है, प्रारंभिक तौर पे होता है मस्तिष्क का इमेजिंग होता है, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करा कर अपन देख सकते हैं पहले कि ब्रेन में कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ और कारण तो नहीं बन रहा जिस कारण से ये दौरे का एक कारण बना हुआ है। एक ईजी नाम की जाँच होती है जिसमें अपन मस्तिष्क की तरंगों का जाँच करते हैं कि कहाँ से दौरा आ रहा है, कहाँ से ये करंट की एक्टिविटी हो रही है। तो ये प्रारंभिक जांच होता है, और बाकी अदर कारण में शुगर हो गया, रूटीन ब्लड टेस्ट हो गया, इनका टेस्ट कर सकते हैं। ये सब आजकल लगभग सभी जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात है कि अपन इसमें इलाज की बात करते हैं, तो आजकल लगभग लगभग मिर्गी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है अभी कंडीशन में। तो इतनी सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, लगभग 50-60 तरीके की दवाइयाँ हैं, पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक की पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और अभी की दवाइयाँ बहुत ही पोटेंट हैं मिर्गी को ठीक करने के लिए। अपन टाइम से लें उन दवाइयों को और डॉक्टर के सलाह माने तो मिर्गी से पूर्णतः बचा जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर साहब, हम आप ये जानना चाहेंगे कि ये कोई महिला गर्भवती है और उस समय उस महिला को जो है एपिलेप्सी और मिर्गी की संभावना या बीमारी पहले से है, तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या कोई इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ सकता है क्या?
0: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अभी के समय में। जैसा मैंने पहले बताया, एपिलेप्सी जनरली यंगस्टर्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्टार्टिंग लगभग इसी उम्र में होता है। तो इसका जाहिर सी बात है, जब शादी की उम्र में लड़कियां आती हैं तो उनको उसके शादी के पहले भी काउंसलिंग की जाती है, शादी के बाद भी, उसके बाद जैसे

0: गर्भावस्था की बात आती है कि उस दौरान सीजर आ गया या फिर उससे पहले ही उनको मिर्गी के लक्षण हैं, दवाई चल रहा है, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं? तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपको पहले से ही मिर्गिया फिट्स की समस्या है, आप दवाई ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपके उस कंडीशन को जानते हैं, आप यंग हो, शादी होने वाला है, या फिर आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी हो सकता है, तो उसके लिए आपको दवाई उस तरह ही चुनी जाती है पहले से ही, जो कि आपके हेल्थ को और आने वाले बच्चे के हेल्थ को प्रभावित ना करे या फिर कम प्रभावित करें। तो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाइयाँ हैं एपिलेप्सी या फिट की, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे के लिए ऑलमोस्ट सुटेबल कंडीशन में होती हैं दवाइयाँ। तो आपको घबराने की बात नहीं रहती, बस आपको इतना मानना है कि डॉक्टर ने जो आपको जिस डोज में एडवाइस किया है दवाइयाँ, उस डोज में प्रॉपर तरीके से लेना है और दवाइयों के प्रति लापरवाही नहीं बरतना है। और यदि इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं और अचानक से दवाई बंद कर देते हैं, उस दौरान झटका आता है, तो एबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है और मदर और बच्चे दोनों को खतरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अभी की दवाइयां जो मॉडर्न मेडिसिन में झटके की दवाइयां हैं, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे को और उनकी मदर को कोई प्रभाव नहीं डालती। तो आपके चिकित्सक जो हैं ऐसे दवाइयों को ही सजेस्ट करेंगे आपको, जो कि आपके हेल्थ और बच्चे के हेल्थ को प्रभावित ना करें। इसलिए दवाइयाँ पूर्ण तरह सुरक्षित हैं, तो टाइम से जैसे आपके डॉक्टर ने सलाह दिया है वैसे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।
1: जी, डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, जब एपिलेप्सी या मिर्गी की बात होती है तो इसमें दवाइयाँ जो लिखी जाती हैं, तो क्या जो पेशेंट है वो दवाइयों को रेगुलर खाए और दवाइयों को इस्तेमाल करे तो क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जनरली हमारे पास जो भी मरीज आते हैं मिर्गी के, उनका एक सवाल ये रहता है कि मुझे दवाई कब तक चलेगी, या फिर मैं दवाई कब तक खाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन निर्भर करता है, ब्रेन के कोई बनावटी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ब्रेन में कोई पुरातन घाव तो नहीं है। जनरली जिन मरीजों को अपन इमेजिंग या CT MRI में कुछ बड़ा घाव नहीं दिखता है या फिर कुछ ग्रॉस एबनॉर्मलिटीज़ नहीं हैं, उनमें 2 से 3 दवाइयाँ चलती हैं और ये लगभग लगभग 3 से 5 साल में ऐसे मरीज जनरली ठीक हो जाते हैं। हमको बस एक काम करना है, जो प्रॉपर डोजिंग एडवाइस की गई है उसको टाइम से लेना है और जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर हैं, उनको अवॉइड करना है। और कुछ ही केसेस रहते हैं जिनमें ग्रॉस स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है ब्रेन में या फिर पुराना चोट है, स्कार है, 2, 3, 4 दवाइयों के बाद भी झटका कंट्रोल नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ही मरीज होते हैं जिनकी जो फिट या झटका आने की संभावना है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे मरीज भी दवाइयों के साथ, जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं आज के समय की, और आगे हमारे हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट या फिर उनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं रहता है, तो हम इन दवाइयों को लंबे टाइम तक ले सकते हैं। दवाई पूरी तरह सुरक्षित है, तो दवाई के डोज़ या फिर दवाई की जो नंबर ऑफ टेबलेट्स हैं, कितना टेबलेट चल रहा है, दिन में कितनी बार खा रहे हैं, ये हम डिसाइड ना करें कि दिन में 4-5 दवाई चल रही है, इतना हेवी डोज में हो रहा है, तो डोजिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो वो जानते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके लिए कितनी दवाइयाँ कितनी मात्रा में सेफ़ हैं, तो हम उसका कैलकुलेशन ना करें कि दवाई हमारे लिए ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे मरीज कुछ मान चलो 10 से 15% केसेस होते हैं जो रिफ्रैक्टरी सीजर्स के पेशेंट रहते हैं, लेकिन जो बोलूँगा 70-80% केसेस हैं ऐसे, एक या दो दवाई से कंट्रोल हो जाता है और उनमें अधिकांश केसेस जो हैं वो 5 साल के अंदर में उनको ठीक किया जा सकता है।
1: तो बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब ये. और जिन भी लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं एपिलेप्सी से संबंधित, वो डॉक्टर साहब की बताई बातों पे ज़रूर गौर करेंगे. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं. तो डॉक्टर साहब, जब हम एपिलेप्सी के पेशेंट की बात करते हैं तो उन्हें अधिकतर हिदायत दी जाती है कि उन्हें गाड़ी चलाना जो है, कभी कभी लोग मना कर देते हैं कि आप गाड़ी ना चलाएं, आपका जहाँ पे कार्य होता है वहाँ ना जाएं, पानी जहाँ पे होता है वहाँ ना जाएं. कि
0: हाँ, जैसे मरीज जो इस शुरुआती अवस्था में है, जिनका दौरा कंट्रोल नहीं है और जिनको फ्रीक्वेंट सीजर आ रहे हैं, हम ऐसे मरीजों को जनरली एडवाइस करते हैं ताकि गाड़ी ना चलाएं। दूसरा चीज़ है, कोई तैराकी जगह है, तालाब है, स्विमिंग पूल है, ऐसे जगह पे ना जाएं। और आग वाली जगह ऊँची

0: चाहिए हमारी जगह से बचें। ऐसा हम सलाह इसलिए देते हैं ताकि ये मरीज दौरे के दौरान अपने होश कुछ टाइम के लिए खो देते हैं। पानी के अंदर यदि दौरे आते हैं, उनको आग के आसपास दौरे आते हैं, तो जनरली उनको खतरा ऐसे ही बढ़ जाता है। पानी के अंदर दौरे आ गए तो सांस की दिक्कत, अचानक समूह में पानी जाने, सब समस्याएं आ जाती हैं। आग के पास आ गया तो जलने का खतरा रहेगा, हाइट से गिरने का डर रहेगा, ये सब हैं। और जनरली जब तक दौरा कंट्रोल नहीं है तो अपन इनको गाड़ी चलाने की सलाह, स्विमिंग की सलाह ऐसे नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ एक ड्राइवर है जो बहुत सारे लोग को एक साथ ले जा रहा है। बस का ड्राइवर हो गया, कार ड्राइवर हो गया, ट्रेन ड्राइवर, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे टू व्हीलर चलाना है, सिंगल ड्राइविंग है, तो दौरा जो है 2 से 3 साल तक पूरी तरह कंट्रोल है, दवाई पे आप पूरी तरह विश्वास करते हैं, दवाई पूरी तरह ले रहे हैं, आप दवाई लेने के बाद दौरे नहीं आ रहे हैं 2 से 3 साल तक, तो आप सिंगल हैंड गाड़ी चला सकते हैं, जैसे खुद अपना एक टू व्हीलर हो गया। और लेकिन आपको जहाँ तक हो सके सावधानी रखनी चाहिए, जो पीछे में एक सहायता के लिए किसी को रख सकते हैं आप। यदि जब आपको लगता है आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाए हैं या फिर आपने कोई दवाई डोज मिस कर दी है, तो उस कंडीशन में सलाह दूंगा कि डेफिनेटली आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि उस दौरान आपको दौरे आने का रिस्क बढ़ जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं एपिलेप्सी से संबंधित जो नशा भी करते हैं, तो ये नशा कितना हानिकारक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए?
0: आजकल जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं काफ़ी हद तक सेफ़ हैं और इनसे कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि कोई मरीज ऑलरेडी एडिक्टेड है दूसरों चीज़ों का, जैसे अल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया, या फिर दूसरे तरह के मादक पदार्थ का, तो यदि ऐसे मरीज जो दवाइयाँ लेते हैं और साथ में बैड हैबिट्स या फिर जो मादक पदार्थों का यूज़ भी करते हैं, तो इस दौरान उनको दवाइयों का साइड इफेक्ट होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसमें आता है कि आप गहरी बेहोशी आना, एबनॉर्मल बिहेवियर आना, लीवर किडनी पे असर आना, ये सब का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। मरीज़ जो ऑलरेडी एल्कोहल पे हैं, कई बार उनको नशे के दौरान या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनको उस दौरान में दवाइयों का डोज़ का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। यदि सेम डोज वो दवाई ले रहे हैं तो प्रभावशाली नहीं हो पाता, या फिर नशे के दौरान वो दवाई मिस करते हैं, तो उनको फिट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और साथ में उनके फिर लाइफ को रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं यंगस्टर्स या यूथ को सलाह दूंगा कि नशे से बचें, ताकि इसका इफ़ेक्ट जो आपके बॉडी पे कम हो, साथ में आपकी जो मेडिसिन भी रेगुलर चलते रहें और आपका जो एपिलेप्सी है, बीमारी है, वो आपके कंट्रोल में रहे। जैसे जैसे अपन अल्कोहल या फिर निकोटिन के सेवन को बढ़ाते जाते हैं, बॉडी उसका अभ्यस्त होते जाता है, साथ ही साथ जो एपिलेप्सी की दवाइयों का इफेक्ट भी कम होते जाता है, तो हो सके आपकी दवाइयाँ और बढ़ जाएं फ्यूचर में, आपके हेल्थ को और नुकसान होने का खतरा हो, तो सलाह दूंगा कि नशे से जहाँ जिस हद तक हो सके बचें।
1: और श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज मस्तिष्क से संबंधित जो एक बहुत ही वृहद बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो हमारे श्रोताओं से हमारी यही उम्मीद होगी कि डॉक्टर साहब की बताई गई बातों को ज़रूर ध्यान देंगे और जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं वे सावधानी बरतें और डॉक्टर के पास अवश्य जाएँ और डॉक्टर की बताई गई दवाइयों के अनुसार ही अपना डोज सुनिश्चित करें। तो डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी, कार्यक्रम में आप आए और मस्तिष्क संबंधित जो एक खास बीमारी है एपिलेप्सी मिर्गी, इसके बारे में आपने जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे मस्तिष्क से संबंधित रोग मिर्गी कारण लक्षण एवं उपचार। इस विषय पर डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से

0: ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं कल 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्लास्टिक का कचरा इस समय दुनिया और पर्यावरण के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए अंबिकापुर के एक कैफे ने अनूठी पहल की है। इस गार्बेज कैफे में प्लास्टिक के कचरे के बदले लोगों को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। हमारे सरगुजा संवाददाता आलोक शुक्ल ने इस कैफे के संचालक रितेश सैनी से बातचीत की है। पेश है इस भेंटवार्ता के मुख्य अंश।
2: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं आलोक शुक्ल। प्लास्टिक की बोतलें, कचड़े, इन सब को डिस्पोजल करने के लिए हमेशा समस्या आती है कि इनका नष्टीकरण कहां जाए। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक के चाहे कचरे हो, प्लास्टिक के सामान हो, प्लास्टिक की बोतल, क्योंकि आजकल हर चीज में, चाहे मिनरल वाटर लेना हो, पानी की बोतल लेना हो, या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो, तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं। इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। प्लास्टिक के जो कचरे हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में, जो सरकारी बस स्टैंड है, वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो इस प्रेरक कहानी के पीछे जिनका हाथ है या जो यहाँ संचालन कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, नगर निगम के ही रितेश सैनी जी से। नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पर ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत एस एल आर एम प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। हर वार्डों में, लगभग अंबिकापुर में 20 एस एल आर एम सेंटर काम कर रहे हैं। उन वार्डों में दीदियाँ जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद एस एल आर एम सेंटर में आता है, जहाँ पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या जार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहाँ सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो एस एल आर एम सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की, उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है। वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन, जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज़्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे, वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जो लोकल वेंडर्स थे भी तो उनके पास बहुत ज्यादा रेट नहीं मिलता था, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो में ही वो खरीदते थे। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। तो वो प्लास्टिक जो 5-6 रुपए किलो में जा रही थी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं, वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक को एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है, वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है, उस टोकन को

0: करके आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: Yes.
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे?
0: 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारीगण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारीगण थे उन लोगों ने कहा जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर वो 28-30-40 रुपए किलो में जा रही है। सारे खर्चों को काट करके अगर 1 रुपए प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने टेंडर किया।
1: ये ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए,
0: यस
1: ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: बाकी जो आते हैं तो उसके लिए भी एक रेट है।
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे तो उनके साथ कोई भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। जब कोविड आया, कोविड के पीरियड में एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि रेस्टोरेंट को अपन को खोलना नहीं है, तो उस पीरियड में जो 1.5-2 साल का पीरियड था उस पीरियड बस में इस गार्बेज कैफे को बंद करके रखना पड़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने रिस्टार्ट कर दिया। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन
1: कंटिन्यूअसली
0: आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे, कई लोगों की स्टोरी भी, रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो एक मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? क्या बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है। ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव यह पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27-28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था, दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं आप पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक

0: प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया। और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना। आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए। एक किलो हो गया, गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: जैसे एक किलो का हो गया, आधा किलो का हो गया, क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: कैफे पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: वृद्धि हुई है, उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी बढ़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको।
1: तो क्या क्या आइटम रहता है यहाँ पे खाने में, क्या क्या देते हैं?
0: रोटी, चावल, दो प्रकार की सब्जी, अचार, पापड़, ये जो है वो तो खाने का हो गया। नाश्ते में जैसे अगर ये आज समोसा बनाया तो समोसा, अगर आज ये इडली बना दिए हैं तो इडली, अगर किसी दिन बड़ा बना दिए हैं तो बड़ा, तो उसमें वेरिएशन होता रहता है। सब्जियों में वेरिएशन होता है कि आज किसकी सब्जी बनी है, जिसकी सब्जी।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल। तो जनता का जो भरोसा है, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है कि रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है,
1: पूरा साफ सुथरा है। पीछे ये पानी की बोतल लगी हुई है, खाद्य सामग्री पैक करने के लिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। तो जो छोटे छोटे ये जो पोस्टर हैं, इनके माध्यम से भी एक बृहद संदेश देने की जो है ये कोशिशें हो रही हैं। और ये जो बता रहे हैं सैनी जी, ये इसके इंचार्ज हैं, यहाँ पे पूरा देख रेख करते हैं, और ये बता रहे हैं कि दिनों दिन ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इससे सबसे बड़ा जो लाभान्वित वर्ग है वो गरीबों का है, जो दिन भर मेहनत कश जो मजदूर हैं, श्रम करते हैं, और जो अपने परिवार को भी लेके जाना चाहते थे होटलों में लेकिन उनकी कल्पना साकार नहीं हो पाती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए गार्बेज कैफे से उनके उनके परिवार को भी एक बैठने का, एक जो उचित वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में जो बड़े बड़े शहरों पे वो देखा करते थे, तो वो भी उनकी कल्पना साकार हुई। श्रोताओं, आज एक बहुत अच्छा विषय रहा, और ये जो गार्बेज कैफे की यात्रा है, उस यात्रा के ये सबसे प्रमुख एक जो व्यक्ति हैं, इनकी देख रेख पे ये कुशलतापूर्वक चल रहा है। आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा, तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं। अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम आपको उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें,
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है। जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली और देश और विदेश में चर्चा का विषय बनी। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंबिकापुर के गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से हमारे सरगुजा संवाददाता आलोक शुक्ल की ये भेंट वार्ता। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

0: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की थी। आकाशवाणी का
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए अभी से पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। नमस्कार साथियों, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विक्की गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुंजन। साथियों, आज हम बातें करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर इंसान से जुड़ा है, वक्त के साथ बदलती जिंदगी। कहा जाता है समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, गांव से शहर तक, सीखियों से मोबाइल तक, बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक, सब कुछ बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इंसान की सोच और जीवन शैली में आया है। पहले लोगों के पास सुविधाएं कम थी, लेकिन रिश्तों में अपनापन ज़्यादा था। आज सुविधाएं बढ़ गईं, मगर समय की कमी महसूस होने लगी। वक्त का पहिया लगातार घूम रहा है और उसके साथ हमारी ज़िंदगी भी बदलती जा रही है। तो आइए इस बदलती ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म गोलमाल से, जिसमें गुलजार की सब दृश्या को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने, आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: साथियों, जब भी बदलती जिंदगी की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है अपना बचपन। एक समय था जब बच्चों की दुनिया घर के बाहर शुरू होती थी, सुबह स्कूल और शाम दोस्तों के साथ खेल, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, पिट्ठू और लुका छिपी जैसे खेल हर गांव और शहर में दिखाई देते थे। गर्मी की छुट्टियां आते ही नानी दादी के घर जाने की खुशी अलग ही होती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, रात में छत पर सोते हुए तारों को देखा जाता था और दादी नानी की कहानियाँ सुनी जाती थी। आज का बचपन पहले से काफ़ी अलग है। बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह मोबाइल फ़ोन और टैबलेट आ गए हैं। पढ़ाई के तरीके बदल गए हैं। ऑनलाइन क्लास और इंटरनेट ने शिक्षा को आसान बना दिया है, लेकिन बच्चों का प्रकृति और खेलों से जुड़ाव थोड़ा कम हुआ है। यह बदलाव बुरा नहीं, लेकिन संतुलन जरूरी है। तकनीक का उपयोग हो, लेकिन बचपन की मासूमियत भी बनी रहे, क्योंकि यही बचपन आगे चलकर सुंदर यादों का खजाना बनता है। आज जब बड़े होकर हम अपने बचपन को याद करते हैं तो एहसास होता है कि वह समय कितना अनमोल था। शायद इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर बचपन ही होता है। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म तारे जमीन पर से ये प्यारा सा गीत। आवाज़ है शान और आमिर खान की, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का, सब दृश्य है प्रसून जोशी की।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: साथियों, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में। आज हम बातें कर रहे हैं वक्त के साथ बदलती जिंदगी। साथियों, जिंदगी में यदि किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है तो वह है हमारे रिश्ते। रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं, खुशियाँ देते हैं और मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। कुछ वर्षों पहले तक संयुक्त परिवार भारतीय समाज की पहचान हुआ करती थी। एक ही घर में दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और कई सदस्य साथ रहते थे। घर में किसी एक व्यक्ति की परेशानी पूरे परिवार की परेशानी बन जाती थी और किसी एक की खुशी पूरे घर की खुशी। समय बदला, रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़े, लोग अलग अलग शहरों में जाने लगे, परिवार छोटे होते गए। आज कई घरों में माता पिता और बच्चे ही रह रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने दूरी बैठे लोगों को जोड़ दिया, लेकिन कई बार आमने सामने बैठकर बात करने का समय कम हो गया है। पहले त्यौहार पूरे मोहल्ले और परिवार के साथ मनाए जाते थे, आज शुभकामनाएँ अक्सर मोबाइल स्क्रीन तक सीमित हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, प्यार, सम्मान और विश्वास की ज़रूरत कभी खत्म नहीं होती। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए समय देना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट हमेशा दिल में बनी रहती है। साथियों, अगर हम अपने गाँव और शहरों को भी देखें तो यहाँ भी समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। एक दौर था जब गाँव में कच्ची सड़कें हुआ करती थीं, संचार के साधन सीमित थे और जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता था। खेती पूरी तरह पारंपरिक तरीकों पर आधारित थी। आज गाँवों का सड़क, बिजली, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बहुत पहुँच चुके हैं। किसान मौसम की जानकारी मोबाइल से प्राप्त कर रहे हैं। ऑनलाइन सेवाएँ गाँव तक पहुँच रही है। युवा गाँव में रहकर भी देश दुनिया से जुड़ रहे हैं। वहीं शहरों का विस्तार भी तेज़ी से हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें, मेट्रो ट्रेन, डिजिटल सेवाएं और आधुनिक सुविधाएं जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इन बदलाव के बीच हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी संभाल कर रखना होगा। आधुनिकता और संस्कार जब साथ चलते हैं तभी समाज का सही विकास होता है। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन का अगला गीत फिल्म स्वदेश से। आवाज़ और संगीत निर्देशन है AR रहमान का, शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: साथियों, आज हम बातें कर रहे हैं हम सबके जीवन से जुड़े विषय वक्त के साथ बदलती जिंदगी की, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विकी गुप्ता। साथियों, आज तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी तकनीक का उपयोग करते हैं। पहले लोगों को किसी रिश्तेदार की खबर लेने के लिए चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, जवाब आने में कई दिन लग जाते थे। आज वीडियो कॉल के जरिए हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को देख और सुन सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन पढ़ाई और सोशल मीडिया ने जीवन को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। आज एक मोबाइल फ़ोन में बैंक, बाजार, मनोरंजन और जानकारी सब कुछ मौजूद है, लेकिन हर सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तकनीक का सही उपयोग हमें आगे बढ़ाता है, जबकि उसका गलत उपयोग समय और ऊर्जा दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए तकनीक को अपनाइए, लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बनाने और उससे संवारने में बहुत ही उपयोगी होती है। साथियों, हर पीढ़ी अपने साथ नए सपने लेकर आती है। समय के साथ इंसान की सोच और उसके लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। पहले युवाओं के लिए नौकरी ही सबसे बड़ा सपना हुआ करता था। लोग एक स्थिर जीवन चाहते थे, लेकिन आज के युवा अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वे नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई रेडियो जॉकी, कोई पत्रकार, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहता है। बदलाव का यह दौर बताता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जरूरी यह है कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करें। समय बदलता है, अवसर बदलते हैं, लेकिन मेहनत का महत्व कभी नहीं बदलता। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म काइट्स से ये प्यारा सा गीत। आवाज है केके की, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का, और गीतकार हैं हासिर फराज़।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी

साथियों, केवल समय ही नहीं बल्कि जीवन के अनुभव भी हमें बदलते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो दुनिया को एक नज़र से देखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव बढ़ते हैं और हमारी सोच भी परिपक्व होती जाती है। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है, जबकि असफलता हमें धैर्य और संघर्ष का महत्व सिखाती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। कई बार हम जिन परिस्थितियों को बुरा समझते हैं वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जीवन का हर अनुभव एक नई सीख लेकर आता है, इसलिए कठिन समय आने पर घबराना नहीं चाहते, क्योंकि समय बदलता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती है। तो साथियों, आज के पूरे कार्यक्रम में हम आइए सुनते हैं यह अंतिम गीत फिल्म रॉक स्टार से। आवाज़ मोहित चौहान की, संगीत निर्देशन है ए आर रहमान का, शब्द रचना है इरशाद कामिल की।

0: साथियों, आज के पूरे कार्यक्रम में हमने देखा कि वक्त के साथ हमारी ज़िंदगी किस तरह बदलती रहती है। बचपन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, तकनीक बदलती है, सपने बदलते हैं और हम भी बदल जाते हैं। लेकिन इन सब बदलावों के बीच कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी नहीं बदलने देना चाहिए। इंसानियत, ईमानदारी, प्रेम, सम्मान और दूसरों की मदद करने की भावना हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करता है और उससे सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। हर नया दिन हमें कुछ नया सिखाने आता है। तो आइए हम समय के साथ चलें, बदलाव को अपनाएं और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं विक्की गुप्ता आप सभी से इजाज़त लेता हूं आज के कार्यक्रम में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही सफल हो सकता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी माता के नाम एक पौधा लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। वन मंत्री केदार कश्यप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया।

कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 4 दिवसीय बस्तर प्रवास के पहले दिन कल कांकेर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़े गौरी में जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लिया और निर्माणाधीन नालंदा परिसर तथा अमोड़ा नरहरपुर सड़क का निरीक्षण किया। सड़क निर्माण की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे 4 दिन बस्तर संभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुशासन तिहार के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कल कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने तरेगांव में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजा नवागांव में 75 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन की स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए जानते हैं तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 0.2 मिलीमीटर मापी गई। तापमान संबंधी सूचना के बाद आइए एक नज़र डालें आज के शेष आकर्षणों पर। दिन के 11:05 पर आप सुन सकेंगे श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, और दोपहर के ठीक 12 बजे आप सुन सकेंगे मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। साथ ही जफर हुसैन खां बदाउनी और साथियों के स्वर में कुछ कव्वालियाँ आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 पर। और श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 पर। साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत घंटा का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोड का प्रसारण समय होगा शाम के ठीक 5 बजे। और गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। और कार्यक्रम रजनीगंधा सुन सकेंगे शाम 7:05 पर।

युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर। साथ ही ग्रामीण श्रोता कार्यक्रम चौपाल सुन सकेंगे तय समय शाम 7:20 पर। साथ ही सरगुजिया लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि के ठीक 8:00 और कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि के ठीक 10:00 जिसमें आज आप सुनेंगे हरिषिकेश गगुर्दे के ओकल ख्याल। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:03 हुए हैं। लीजिए फिर से नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं हिट द फर्स्ट केस से ये प्यारा सा गीत। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, संगीतकार है मिथुन, गीतकार हैं सईद कादरी।

लीजिए अभी से कार्यक्रम नए तराने की अगली पेशकश अरिजीत सिंह की स्वर में। धुन दिया है अमाल मलिक ने, शब्द रचना है मनोज मुंतशिर की। फिल्म का नाम है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: तहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि साझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अभी तो शुरू होगी साहेब।
0: हाँ
1: हुँ?
0: तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

लीजिए फिर सिर्फ कार्यक्रम नैतरानी की अगली पेशकश फिल्म आशिकी 2 से। आवाज़ अरिजीत सिंह की, संगीतकार और गीतकार हैं मिथुन।

आरिफ लोहार के स्वर में लीजिए पेशे कार्यक्रम का अगला गीत। धुन दिया है शंकर एहसान लोय ने, गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

लिशाफे से फिल्म तिस्तगी से यकीत आवाज पलक मुच्छल की, संगीत निर्देशन है गोफी का, सब दृश्य है मांजेर बालवी की।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी

0: दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने की अगली पेशकश फिल्म सुल्तान से। आवाज है राहत फतेह अली खां की, संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का और शब्द रचना है इरशाद कामिल की।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म केक से, जिसमें कुमार की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है मेट ब्रॉस ने, आवाज़ दी है सलमान खान, मेट ब्रॉस श्रेया घोषाल ने।

लीजिए फिर से कार्यक्रम नए तराने की अगली पेशकश फिल्म जिस्म टू से। आवाज है सोनू कक्कर की, संगीतकार और गीतकार हैं मिथुन।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: जुबिन नौटियाल के स्वर में लीजिए इस कार्यक्रम का अगला गीत। धुन दिया है समीर टंडन ने, रचनाकार हैं समीर अंजान, फिल्म का नाम है द बॉडी।

लीजिए फिर से कार्यक्रम का अंतिम गीत जुबिन नौटियाल के स्वर में। फिल्म का नाम है काबिल, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और शब्द रचना है मनोज मुंतशिर की।

0: अभी आप सुन रहे थे जिस्म टू फिल्म के गीत, और इसी के साथ ही कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 11 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और

0: निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 11:05 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में पहली फरमाइश आई है शिवाजी चौक राजिम से, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरवी देवी, विशा और लबी श्रीवास्तव। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। अलीका डबवाली से हमारे श्रोता साथी हैं बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। शहीद टेकराम चौक से हथबंद करेली से भाई रामाधर ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार ध्रुव। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला दादी। पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय साहू, सुजीता साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आइए आप सभी के फरमाइश पर सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में दीवाना फिल्म का एक गीत। बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगले गीत की फरमाइश आई है धरसींवा छत्तीसगढ़ से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, इकबाल कुरैशी, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था यादव की। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, खुशी प्रवीण कुमार साहू, अर्पिता, अभिनव यादव और सीएल यादव की। भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडीह से हमारे श्रोता साथी हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा। सिद्ध बाबा भाटापारा से इस गीत को सुनना चाहा है संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा, शिवम और वैष्णव ने। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत प्रसाद वर्मा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इंदिरानगर रायगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम रजा। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म तनु वेड्स मनु का ये गीत शफाकत अमानत अली की आवाज़ में। लिखा है राजशेखर ने, संगीत से सजाया है कृष्णा ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ, 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम में पेश नजर है खुदगर्ज फिल्म का एक गीत, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। लिखा हिंदी वर ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। सुनना चाहा है डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा। पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका, मीनाक्षी और चंद्रप्रभा। ग्राम परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, तुषारनी और खुमेंद्र मसिया। अंबागढ़ चौकी से इस गीत को सुनना चाहा है रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान ने।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा के साथ। लीजिए अब सुनते हैं अनवर फिल्म का ये गीत, रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में, बोल हैं सईद कादरी के, संगीत निर्देशन है मिथुन का, सुनना चाहा है। ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति ने। ग्राम कालापारा, जिला सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, दशरथ गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रकृति गुप्ता और रामाधार राजवाड़े। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से भगवानी, संतोषी ज्योति, गजेंद्र, चंद्रप्रकाश एवं सेन परिवार। सीमंधर पार्क, वीरम गांव से अजीत, प्रेमिला, भावेश, सन्नी, हेतल, कृष्णा और जेमिन भवसार। छत्तीसगढ़ पत्थरिया भरेवा से हमारे श्रोता साथी हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और बेबी वान्या सिंगरौल।

0: राम राम हो किशोर भैया।
1: राम राम बिनु भैया।
0: ए दे भाई नगत, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: टेकर में ए दे जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ

0: ये दे राउर ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी आ वे दे विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारेन में
1: हाँ
0: आए
1: हाँ
0: तेकर में कहन कि ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं
1: हाँ
0: तहाँ
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी ये ला ये दे सुन सकते हैं।
0: हाँ अब ये तो शुरू होगी साहेब।
1: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम किसान वाड़ी।

कार्यक्रम आपकी पसंद में लीजिए पेश है उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म क्यों हो गया ना का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शंकर एहसान और लॉय। श्रोता साथी हैं दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू और रविंद्र सेन। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से हमारे श्रोता साथी हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी, गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण भाव खर्चे।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: श्रोताओं, वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, जिसकी फरमाइश हमें आई है दौलतबाग मुरादाबाद से। जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी की। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश देवांगन और राजू देवांगन।

इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी और तृप्तेश देवांगन, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मीका बीरक। इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत संगीत।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे नायक फिल्म का ये गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के सभी 194 नगरीय निकायों में शहरी विकास योजनाओं की निगरानी और सशक्त करने का निर्णय लिया है। विभाग की सचिव संगीता आर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज 6 जून को सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अपने अपने जिलों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। दुर्ग जिले में अफ्रीकी देशों से आए 4 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एहतियात के तौर पर 21 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें कांगो, इथोपिया, युगांडा और सूडान से आए यात्री शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी ने बताया कि सभी यात्रियों की प्रतिदिन स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। फिलहाल 4 यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

0: मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। भारत सरकार की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन दंतेवाड़ा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 8 जून को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। मेले में जिले के समस्त आईटीआई के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों, पूर्व प्रशिक्षणार्थियों और अन्य इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया गया है। गौरेला पिंड और मरवाही जिले के कोटमीकला साप्ताहिक हाट बाजार में ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। पेश है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आगाज करेंगे अदनान सामी की आवाज़ में इस गीत के साथ। लिखा है रियाज़ुर रहमान सहगल ने, संगीत निर्देशन है अदनान सामी का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: लीजिए, अब सुनते हैं सागरिका की आवाज में गीत। गीतकार और संगीतकार हैं बिद्दू।

सागरिका की आवाज़ में इस गीत के बाद लीजिए अब सुनते हैं पलाश सेन की आवाज़ में ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं यूफोरिया बैंड।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। लीजिए आप सुनते हैं चमेली फिल्म का एक गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत निर्देशन है संदेश सांडिल्य का।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर

0: ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

सोनू निगम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, लिखा था फैज़ अनवर ने, संगीत निर्देशन था साजिद वाजिद का। इसी के साथ ही मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। पेश है कव्वालियों का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे जफर हुसैन खान बदाउनी और साथियों के स्वर में कुछ कव्वालियाँ। लीजिए सुनते हैं पहली कव्वाली।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

0: जफर हुसैन बदाउनी और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कव्वाली। इसी के साथ ही कव्वालियों का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जाँच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेश

0: निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बात में लीजिए सुनते हैं शिमला मिर्च की खेती लाभकारी विषय पर सामयिक सुझाव।
2: शिमला मिर्च की उन्नत खेती। सब्जियों में शिमला मिर्च की खेती का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसको ग्रीन पेपर, स्वीट पेपर, बेल पेपर आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। आकार एवं तीखापन से यह मिर्च से भिन्न होता है। इसके फल गूदादार, मांसल, मोटा, घंटीनुमा, कहीं से उभरा तो कहीं से नीचे दबा हुआ होता है। शिमला मिर्च की लगभग सभी किस्मों में तीखापन अत्यंत कम या नहीं के बराबर पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए तथा सी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि किसान इसकी खेती उन्नत व वैज्ञानिक तरीके से करे तो अधिक उत्पादन एवं आय प्राप्त कर सकता है। जलवायु, यह नर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः शीत ऋतु में तापमान 100 सेल्सियस से अक्सर नीचे नहीं जाता एवं ठंड का प्रभाव बहुत कम दिनों के लिए रहने के कारण इसकी वर्ष भर फसल ली जा सकती है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है। ठंडे मौसम में इसके फूल कम लगते हैं। फल छोटे, कड़े एवं टेढ़े मेढ़े आकार के हो जाते हैं तथा अधिक तापक्रम होने से भी इसके फूल एवं फल झड़ने लगते हैं। भूमि, इसकी भूमि के लिए अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6 से 6.5 हो सर्वोत्तम माना जाता है। वहीं बलुई दोमट मृदा में भी अधिक खाद डालकर एवं सही समय उचित सिंचाई प्रबंधन द्वारा खेती किया जा सकता है। जमीन के सतह से नीचे क्यारियों की अपेक्षा इसकी खेती के लिए जमीन की सतह से ऊपर उठी एवं समतल क्यारियां ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। उन्नत किस्में, शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों में अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, किंग ऑफ नॉर्थ, कैलिफोर्निया वंडर, अर्का बसंत, ऐश्वर्या, अलंकार, अनुपम, हरी रानी, पूसा दीप्ति, भारत ग्रीन गोल्ड, हीरा, इंदिरा प्रमुख हैं। खाद एवं उर्वरक, खेत की तैयारी के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद डालना चाहिए। आधार खाद के रूप में रोपाई के समय 60 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम स्फूर एवं 40 से 60 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। 60 किलोग्राम नत्रजन को दो भागों में बांटकर खड़ी फसल में रोपाई के 30 एवं 55 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़कना चाहिए। नर्सरी तैयार करना, 3×1 मीटर आकार के जमीन की सतह से ऊपर उठी क्यारियां बनाना चाहिए। इस तरह से 5-6 क्यारियां 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त रहती हैं। प्रत्येक क्यारी में 2 से 3 टोकरी गोबर की अच्छी सड़ी खाद डालना चाहिए। मृदा को उपचारित करने के लिए 1 ग्राम बाविस्टीन को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लगभग 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगाने के लिए पर्याप्त रहता है। बीजों को बोने के पूर्व थाइरम, कैप्टान या बाविस्टीन के 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके कतारों में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की दूरी से लकड़ी या कुदाली की सहायता से 1 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी में बुआई करना चाहिए। बीजों को बोने के बाद गोबर की खाद व मिट्टी के मिश्रण से ढककर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करना चाहिए। यदि संभव हो तो क्यारियों को पुआल या सूखी घास से कुछ दिनों के लिए ढक देना चाहिए। रोपण एवं दूरी। सामान्यतः

0: 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा, 4-5 पत्तियों वाला पौध जो कि लगभग 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाता है, रोपण के लिए प्रयोग करें। पौध रोपण के एक दिन पूर्व क्यारियों में सिंचाई कर देना चाहिए ताकि पौध आसानी से निकाला जा सके। पौध को शाम के समय मुख्य खेत में 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। रोपाई के पूर्व पौध की जड़ को बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा डुबा कर रखना चाहिए। रोपाई के बाद खेत की हल्की सिंचाई करें। शिमला मिर्च की फसल को कम एवं ज़्यादा पानी दोनों से नुकसान होता है। यदि खेत में ज़्यादा पानी का भराव हो गया हो तो तुरंत जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। मृदा में नमी कम होने पर सिंचाई करना चाहिए। नमी की पहचान करने के लिए खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर लड्डू बनाकर देखना चाहिए। यदि मिट्टी का लड्डू आसानी से बने तो मृदा में नमी है, यदि न बने तो सिंचाई कर देना चाहिए। सामान्यतः गर्मियों में एक सप्ताह एवं शीत ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। निराई गुड़ाई रोपण के बाद शुरू के 30 से 45 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना अच्छे फसल उत्पादन की दृष्टि से आवश्यक है। कम से कम दो निराई गुड़ाई लाभप्रद रहती है। पहली निराई गुड़ाई रोपण के 25 एवं दूसरी 45 दिन के बाद करना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे शिमला मिर्च की खेती लाभकारी विषय पर सामयिक सुझाव। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को मधु का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, कहते हैं कि ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है, जीवन एक खेल है, खेलना ज़रूरी है। किसी भी कार्य में हम कितने निपुण हैं ये हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि हम उस कार्य को करके देख नहीं लें। इसलिए दूर से ही देखकर अपने बल या फिर कौशल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, उसे आज़माना भी पड़ता है। बहनों, आज हम आपसे एक खास विषय पर बातचीत करेंगे जो हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तनाव मुक्त जीवन और मानसिक शांति का आधार हमारे खेलों की। आज का जो परिवेश है बहनों, उसमें हमारे बच्चे शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, और केवल बच्चे ही नहीं बड़े भी। वे सभी चाहते हैं कि बच्चा खूब पढ़ लिख ले ताकि भविष्य उज्जवल हो, लेकिन आपके इस प्रयास ने बच्चों को कहीं ना कहीं मानसिक तनाव या डिप्रेशन में भी ला दिया है। इस बात को भी अनदेखा आपको नहीं करना चाहिए। केवल किताबी शिक्षा या कंप्यूटर व मोबाइल के प्रयोग से आप उन्हें शिक्षित तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना वे तभी कर पाएंगे जब उनका शरीर और मन इसके लिए तैयार हो। बहनों, हमारे खेल बच्चों को हर तरह के विकास के लिए आधार होते हैं। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शारीरिक मजबूती, मानसिक तीक्ष्णता और भावनात्मक स्थिरता विकसित करने में मदद करते हैं। खेलने से बच्चों की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। वे शारीरिक संतुलन और सहन शक्ति का गुण अपने अंदर विकसित करते हैं। खेल कूद से मस्तिष्क तो सक्रिय होता ही है, साथ ही रणनीतिक खेल और पहेलियां बच्चों की याददाश्त और एकाग्रता भी बढ़ाती हैं। उनमें किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास होता है। हम जानते हैं बहनों कि जीवन में एक दूसरे का सम्मान और साझेदारी कितनी ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ें उन्हें सामूहिक खेलों जैसे फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट जैसे खेलों में भाग लेने से अपने आप ही समझ आ जाती हैं, क्योंकि इससे बच्चे में सहयोग की भावना, अनुशासन और मिलजुल कर रहने की भावना आती है। इतना ही नहीं, खेलों से मिलने वाली हार जीत उनमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण जैसे गुण पैदा करती है, जो उन्हें तनाव और दबाव का सामना करने के लिए तैयार करती है। बहनों, जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं ना, तो उनमें किसी भी बात को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं होती। अपनी निर्णय क्षमता पर उन्हें खुद ही भरोसा होने लगता है। आज तो खेल जो है वो करियर बनाने का भी एक बेहतरीन माध्यम है। इसलिए बेझिझक अपने बच्चों को खेल के प्रति मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो सके। तो बहनों, हम बातें और भी करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इन जरूरी संदेशों के बाद बहनों अब बारी है गीत की, सुनते हैं फिल्म एक्स मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये खूबसूरत सा गीत। अब चलते हैं अपने अगले क्रम की ओर, जो है हमारा आज का शक्ति अभिव्यक्ति क्रम। ये क्रम हमारी बहनों के शक्ति स्वरूप से आपका परिचय कराते हमारे आज के इस क्रम में आपका स्वागत है। बहनों, ईश्वर ने इस धरती को कितना खूबसूरत बनाया है ना, हर एक चीज नई विशेषता के साथ, हर एक कण नए रहस्यों को उजागर करता हुआ, कितना अद्भुत है ना ये सब। बावजूद इसके कि हम और इस धरती के सभी सजीव एक दूसरे से दिखने में भले ही अलग हों, पर प्रकृति और इंसान दोनों को ईश्वर ने एक ऐसे सहयोग के चक्र में बांधा है कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। और आज का हमारा ये शक्ति अभिव्यक्ति क्रम एक ऐसी ही खास महिला शख्सियत को समर्पित है, जो जंगल का विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट उपनाम से जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं तुलसी गौड़ा जी की। आपको बता दें बहनों कि तुलसी गौड़ा कर्नाटक के हलाक्की आदिवासी समुदाय से आने वाली एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के उन्होंने पौधों और जड़ी बूटियों के अपार ज्ञान के कारण जंगल का एनसाइक्लोपीडिया का उपनाम अर्जित किया। बहनों, आपको बता दें कि तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 के आसपास कर्नाटक के अंकोला तालुक में होन्नाली गाँव में हुआ था। जब वे केवल 2 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था और आर्थिक तंगी के कारण वे स्कूल भी नहीं जा पाई। वे अपनी माँ के साथ एक स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थी। एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में 35 वर्ष तक काम करने के बाद उनके अद्वितीय ज्ञान और समर्पण को देखते हुए उन्हें कर्नाटक वन विभाग में एक स्थायी नौकरी दे दी गई। 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने तक उन्होंने विभाग के साथ काम किया। बहनों, शिक्षित न होने के बावजूद उन्हें पेड़ों, जड़ी बूटियों और जंगलों का गहरा और असाधारण व्यवहारिक ज्ञान था। वह किसी भी वृक्ष की प्रजाति के मातृ वृक्ष और उनके बीजों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ थी। शुरू में उन्होंने कर्नाटक वन विभाग में एक स्वयं सेवक के पद पर कार्य किया। उनके अद्भुत ज्ञान और समर्पण को देखते हुए विभाग ने उन्हें बाद में स्थायी नौकरी दे दी और 70 वर्ष की आयु में वे सेवानिवृत्त हुई। बहनों, उन्होंने पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम के कारण 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए और उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। उन्हें वृक्ष देवी भी कहा जाता था, जो कि उन्हें वनों के बारे में व्यापक ज्ञान होने के कारण कहा जाता था। बहनों, ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने 1,00,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और इनके द्वारा लगाया गया एक भी पौधा आज तक नहीं सूखा। तुलसी अपने पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह किया करती थी। छोटी झाड़ियों से लेकर ऊंचे पेड़ों तक कब किसे कैसी देखभाल की जरूरत है वे अच्छी तरह जानती थी। वे पौधों की बुनियादी जरूरतों से भली भांति परिचित थी। उनकी खासियत ये भी थी कि वे केवल पौधे लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती थी, बल्कि उस पौधे की देखभाल तब तक करती थी जब तक वह अपने बल पर खड़ा ना हो जाए। उन्हें पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उनके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में गहरी जानकारी थी। इनसे संबंधित जानकारी लेने के लिए न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि वन विभाग के पदाधिकारी लोग भी प्रकृति संरक्षण हेतु कई विषयों पर इनकी

राय को महत्व देते थे बहनों। पेड़ पौधों पर उनके व्यापक ज्ञान को सरकार द्वारा मान्यता दी गई, क्योंकि ऐसा ज्ञान किसी वनस्पति वैज्ञानिक के पास होना भी दुर्लभ है बहनों। ट्राइबल समुदाय से संबंध रखने के कारण पर्यावरण संरक्षण का भाव उन्हें विरासत में मिला। बहनों ट्राइबल्स जो होते हैं वो जन्म से ही बिना किसी लालच के प्रकृति की रक्षा करते हैं। उनकी संस्कृति और पर्व त्योहारों का पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध रहा है। यही वजह है कि जंगलों पर आश्रित होने के बावजूद पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्राइबल सदैव तत्पर रहते हैं। बहनों ट्राइबल समाज में जल, जंगल और जीवन, इन्हें बचाने की संस्कृति आज भी विद्यमान है और तुलसी घोड़ा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपको बता दें बहनों कि इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। वनीकरण और बंजर भूमि के विकास के क्षेत्र में अग्रणी और अनुकरणीय कार्य के लिए तुलसी को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। उन्हें कर्नाटक राज्योत्सव सम्मान, कविता मेमोरियल अवार्ड, इंद्रावलु होनैया समाज सेवा पुरस्कार सहित कई अन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तुलसी गौड़ा जी की विरासत प्रेरणा और सशक्तिकरण की विरासत है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि प्रकृति के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम कितना महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। उन्होंने पर्यावरण के प्रति देखभाल और जुड़ाव की संस्कृति विकसित करने के महत्व को भी दर्शाया। बहनों पर्यावरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले तुलसी गौड़ा 86 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर 2024 को हमारे बीच नहीं रही, मगर उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रकृति के प्रति सच्चा प्रेम और लगन किसी भी प्रकार की किताबी शिक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उनके जज्बे को हमारा सलाम है बहनों और उनको हमारा शत शत नमन है। तो हमारा आज का शक्ति अभिव्यक्ति क्रम बस यही तक। बहनों अभी आप सुन रही थी हमारा आज का शक्ति अभिव्यक्ति क्रम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपनी समीक्षा हम तक जरूर पहुंचाएं। और अब बारी है एक गीत की, सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जमीन आसमान का ये खूबसूरत सा गीत। अब चलते हैं अपने अगले क्रम की ओर, जो है आज हमारा व्यंजन विधियों का क्रम। बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं रक्त की कमी यानी कि एनीमिया जैसी समस्या से परेशान होती हैं, और इस कमी को दूर करने के लिए आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड से भरपूर आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो आज का हमारा ये क्रम आपके लिए कुछ आसान और पौष्टिक व्यंजन विधियां लेकर हाजिर है, जो निश्चित ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले तो है चुकंदर और गाजर का सूप। सामग्री इसके लिए आपको लेना है एक छोटा चुकंदर, एक गाजर, आधा इंच अदरक, आधा नींबू और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले आपको चुकंदर और गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। फिर अदरक के साथ कुकर में एक कप पानी डालकर 3-4 सीटी लगा लेना है। ठंडा होने पर मिक्सी में पीस लें। इस सूप को छानें और उसमें नींबू का रस और नमक मिलाएं। इस तरह आपका यह गाजर चुकंदर का सूप तैयार हो जाएगा। आपको बता दें बहनों कि चुकंदर आयरन और फॉलिक एसिड का एक बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। तो बहनों, आप इसे ज़रूर बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी क्रम में जो अगली विधि है वो है मोरिंगा यानी कि सहजन के पत्तों की भुजिया। बहनों, कहते हैं कि सहजन के पत्तों में संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी और पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है। साथ ही यह खून की कमी को भी तेज़ी से दूर करने के लिए बेहतरीन सुपर फूड है। तो इसके लिए आपको बनाने के लिए करना ये है कि 2 कप ताज़े सहजन के पत्ते ले लेने हैं, 1 बारीक प्याज ले लेना है काटकर, 2 कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है। एक पैन में तेल गर्म करके जीरा, हरी मिर्च और प्याज डालकर भून लेना है। अब साफ धुले हुए सहजन के पत्ते डालें, 5 से 7 मिनट तक इसे पकाएं और फिर अंत में हल्का सा नमक डाल लें। इस तरीके से आपका सहजन के पत्तों की भुजिया तैयार हो जाएगी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो ज़रूर बनाकर देखें और हमें अपनी समीक्षा ज़रूर भेजें। हम सुनते हैं अब एक गीत।

बहनों, इस गीत के साथ ही बढ़ते हैं क्रम में आगे की ओर। और इस क्रम की जो अगली विधि है वो है खजूर अंजीर का शेक। बहनों, इसके लिए आपको लेना है 4-5 खजूर, जिसके बीज निकाल लेने हैं, साथ ही 2 अंजीर और 1 गिलास गर्म दूध लेना है। इसके लिए आपको करना यह है कि खजूर और अंजीर को गर्म दूध में 1 से 2 घंटे तक भिगो लेना है। इसके बाद मिक्सी में पीसकर गाढ़ा शेक बना लेना है। इसमें आप चाहें तो कद्दू के बीज भी मिला सकती हैं। मैंने आपको बता दें कि खजूर और अंजीर आयरन व फाइबर के मुख्य स्रोत होते हैं, जो कमजोरी को दूर करते हैं। इसे सुबह पीने से दिन भर ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही हीमोग्लोबिन के स्तर पर भी सुधार होता है। तो मैंने ये हमारे आज के व्यंजन विधियों का क्रम था। और साथ ही हम आपको यही कहना चाहेंगे कि शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए चुकंदर, अनार, गाजर का जूस जो होता है वो, गुड़ तेल का सेवन सबसे असरदार देसी उपाय होता है। इसके अलावा लोहे के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें खाना पकाने से प्राकृतिक रूप से आयरन मिलता है। तो आप जो अपने भोजन में इन सबको ज़रूर शामिल करें। चुकंदर में आयरन फोलिक एसिड भरपूर होता है, और गाजर, अनार, चुकंदर का जूस पीने से ऐसा कहा जाता है कि खून जो है वो तेजी से बढ़ता है।

साथ ही व्हीट ग्रास और एलोवेरा भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसे जूस में मिलाने से हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है बहनों। मुनक्का और अंजीर जो होते हैं, रात को यदि 5-5 मुनक्का और अंजीर को आप पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट चबा कर खाएं तो ये भी फायदेमंद होता है। रोजाना 3-4 खजूर खाने से शरीर में ऊर्जा और आयरन की भी पूर्ति होती है, तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल आप जरूर रखें। गुड़ और तिल जो होता है बहनों, भोजन के बाद थोड़ा सा यदि गुड़ और सफ़ेद तिल खाते हैं तो इससे आयरन की मात्रा भी बढ़ती है। इसी तरीके से आंवला और नींबू भी विटामिन सी और आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है, तो आंवले का मुरब्बा और नींबू का पानी भी आप जरूर ले सकते हैं। तो आज का हमारा व्यंजन विधियों का क्रम बस यहीं तक। अब मुझे यानी मधु को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 1:40 हुए हैं। पेश है श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आज आपके पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज में मैं मृदुल वर्मा नेक ख्वाहिशात और बेहतरीन तमन्नाओं के साथ आप सभी श्रोताओं का इस सुरीले सफ़र में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ।

स्वागत है साथियों आपके पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। आज पहले गीत की फरमाइश आई है राजकोट से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कंचन कुसुम, कलावती सोनी, ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपक वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, ग्राम पंचायत खोंगला उदयपुर सरगुजा से इस गीत को सुनना चाहते हैं जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार, अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गजनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। सदर बाजार कुरावली से हमारे श्रोता साथी हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव हीरावाली फालजिकला पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय गुंडाने, हीरामणि शिंदे। बठेनापाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद वर्मा। वाड़ी खामगांव से अनंता वाढ़े, रामेश्वर वाढ़े, शुभम, साक्षी, खुशी। धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु, रीशु, वी चैतन्य, दुर्गेश, अक्षय, अभिषेक नायडू। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और टुकटुक। ग्राम तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल प्रजापति, दक्ष प्रजापति, कुंती, मंगल, राम एवं रिद्धि सिद्धि प्रजापति। पलारी से नितेश कुमार।

देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन, दतरंगी भाटा पारस है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ मंगलमूर्ति, राजेश रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नुरसा राजवाड़े, कविता मरकाम, आरती मरकाम, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमारे श्रोता साथी हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। ग्राम सौंगा मगरलोट से इस गीत को सुनना चाहा है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन। बेडरी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची तनु करमरकर। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, सोपान तैड़े, नारायण इंगले, आशीष मुरहेकर। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल और भानु प्रकाश। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, इसके साथ ही तुलसी कुमार की आवाज़ में। बोल हैं इरशाद कामिल के, संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

अगले गीत की फरमाइश आई है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से। दिनेश काले, वन्ना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले की। अड़ान नानघाट से माखन वर्मा चांदनी, राहुल गोपी वर्मा। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मुइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार की। बिन्नीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नीति कुमारी। ग्राम राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर साय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू सिंह मरावी। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद सरजल। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा। बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह। आकाशनगर बस्तर से के पुष्पा देवी, कृष्णा कुमार। तेलंगाना भोनगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन। अटल रेडियो श्रोता संघ साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दीपेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा। जशपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफासत रिफाकत, मोहम्मद रिहान, सबरीन परवीन, माहिरा नूर। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके। बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आज़ाद, पोपो रानी। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौसीर अंसारी, आसना अंसारी। कुरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लाभ जुनेजा, सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में क्वीन फिल्म का ये गीत। बोल हैं अन्विता दत्त के, संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का।

लीजिए, अब सुनते हैं अक्सर फिल्म का ये गीत केके और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन है हिमेश रेशमिया का। इस गीत की फरमाइश भेजी है हमें जेल रोड रैगर से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी ने। सेक्टर 4 रायपुर से कौशल गोस्वामी और रिंकी गोस्वामी। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। मिट्ठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंद्रलाल श्रीवास्त, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदु भाई। कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से शौर्य पांडे, रेखा पांडे और प्रताप पांडे। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूढ़त, चेतन नाहटा। शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले, गजानन सलोनकर। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। इंदिरा चौक तखतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से भाई रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बीबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद और कुमार डुडवानी। ग्राम लसूड़िया पाटा तहसील राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। कुड़ी सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश

चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गरवी और मुन्ना हिमाक्ष। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल, फातिमा कॉलोनी श्री रामचंद्रपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नाजिर, शाहिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजाहर मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर की, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई, सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, अयूब खान, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार, रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा सुमन, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, साबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी, जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, नयागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष साहू, कुमकुम साहू, योगेश्वरी साहू, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुकमणि बघेल, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, चरोदा बार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और वर्षा सुमन। आप सबके फरमाइश पर लीजिए अब सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में कलयुग फिल्म का ये गीत। बोल हैं गौहर मुमताज के, संगीत निर्देशन है मिथुन का।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा के साथ। अगली गीत की फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से बलराम सेन इंदुसेन, भोपालगढ़ राजस्थान से।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है डूंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बी प्रियांशी। गुवाहाटी असम से हरिन पंड्या, नरेन पंड्या और वीरेन पंड्या। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। कस्बा बराडा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत गुरकीरत राहुल, गुरबब्द सिंह राहुल। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। चनोरा जिला फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि और आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और इनके साथी। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा। परभड़ी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई। सिद्मा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा और नरेश सिंह। इंदिरा विहार दिल्ली से हमारे श्रोता साथी हैं बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी। बलौदा छत्तीसगढ़ से दिल हरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोड़। तो आप सभी के फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं लव आजकल फिल्म का एक गीत। आवाज़ें हैं सुनिधि चौहान और नीरज श्रीधर की। संगीत निर्देशन है प्रीतम का और बोल हैं इरशाद का मिलके।

0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत

0: करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOn AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है

0: जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम का आगाज करेंगे आशा भोसले की आवाज़ में इस खूबसूरत से गजल के साथ। बोल हैं सभी अब्बास के।

आशा भोसले की आवाज़ में इस खूबसूरत से गज़ल के बाद लीजिए अब सुनते हैं दलेर मेहंदी की आवाज़ में ये गीत। गीतकार हैं संजीव आनंद, संगीत निर्देशन है दलेर मेहंदी का।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। लीजिए अब सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में ये गीत। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

लीजिए पेश है अलीशा चिना की आवाज़ में ये गीत, लिखा है श्याम अनुरागी ने, संगीत से सजाया है बिद्दू ने।

कैलाश खेर की आवाज़ में इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीत गज़लों का कार्यक्रम गीत गंथा यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आइए नज़र डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी अमर गोर। गैर फिल्मी गीत और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:05 पर। शाम 5:30 पर आप सुनिएगा युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनिएगा शाम 6:05 पर। ग्रामीण भाइयों के लिए लोकगीतों का कार्यक्रम गुधली हम आप लेकर आएंगे शाम 6:20 पर। इसमें आप सुनिएगा कुछ सरगुजिया लोकगीत। कुछ फिल्मी नगमे हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर और कार्यक्रम चित्रपट संगीत में रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा होगा शाम 7:05 पर। ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन और बदलता मौसम और कृषि पर प्रभाव। शाम 7:30 पर चौपाल के ही अंतर्गत कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सुनिएगा दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु आहार का महत्व और किसान उत्पादक संगठन। इसके साथ ही आप सुनेंगे कुछ लोकगीत, मंडी भाव, मौसम पर जानकारी और आज का सवाल। रात्रि 8 बजे आप सुनिएगा सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया पर आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे हरी शिकेश गरबुदे का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रम।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:03 हुए हैं। इसी के साथ ही हमारी दूसरी सभा यहीं समाप्त हुई। आप हमारे कार्यक्रमों के साथ 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़े रह सकते हैं, जिसमें हम एफएम गोल्ड का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से करेंगे। अपने सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ शाम 4:58 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये करमडीहा, मेंढारी, गोवर्धनपुर, भगवानपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवाखाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, कुदराझरिया, साजा पानी, सुनार पहरी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारूमा, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये सामहर सिंघा, नागदरहा, सोखा मुड़ा, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये चारमार, मधवानी, जोगीपाली, बड़मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 53 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, जीवन के भाग दौड़ में जब मन थक जाता है, तब प्रभु का स्मरण हमें नई शक्ति, नया विश्वास और नई दिशा देता है। ईश्वर की कृपा ही वो प्रकाश है जो अंधेरों में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं सुप्रसिद्ध भजन गायक हरिओम शरण की मधुर आवाज में ये भावपूर्ण भजन।

फिल्म संत ज्ञानेश्वर से ये भक्ति गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में। गीत की रचना की है पंडित किरण मिश्रा और धर्मेश ने।

कार्यक्रम भजन संध्या में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये भक्ति गीत जिसे हमने लिया है फिल्म नया रास्ता से। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दत्ता नाइक का है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। और अब कार्यक्रम भजन संध्या में लीजिए सुनिए ये मीराबाई द्वारा रचित पारंपरिक रचना अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में।

अनुपमा देशपांडे के गाए इस भजन के साथ कार्यक्रम भजन संध्या अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रागिनी और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहां बात होती है दिल की, जिंदगी की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं लेकिन जुबान तक नहीं पहुंच पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे

0: महत्वपूर्ण विषय पे जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या ना कहना सीखना जरूरी है? जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ कहा क्योंकि सामने वाला बुरा ना मान जाए? कितनी बार आपने अपनी इच्छाओं को दबा दिया सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या सोचेंगे? दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कभी कभी अपनी खुशी और अपनी मन की शांति के लिए ना कहना भी ज़रूरी होता है। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, हर किसी की मदद करती थी। किसी को नोट्स चाहिए, हाँ। किसी का काम करना है, हाँ। कहीं साथ चलना है, हाँ। धीरे धीरे वो दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाती रही, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी मुश्किल होती चली गई। एक दिन उसने महसूस किया कि वह थक चुकी है। उसने पहली बार किसी बात पर कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। और हैरानी की बात तो ये थी कि दुनिया रुकी नहीं, रिश्ते टूटे नहीं, बल्कि उसे पहली बार अपने लिए समय मिला। दोस्तों, ना कहना बदतमीज़ी नहीं है, ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, ना कहना अपनी सीमाओं को समझना है। अगर कोई काम आपकी पढ़ाई, आपकी सेहत, आपकी मानसिक शांति या आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां ना कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर हाँ जो मजबूरी में बोली जाती है वो कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में एक अधूरी शिकायत छोड़ जाती है। और सोचिए, हम अक्सर लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद को कितना पीछे छोड़ देते हैं। हम डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सच तो ये है कि लोग कुछ समय सोचेंगे और फिर अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन की बात नहीं सुनी तो उसका बोझ आप लंबे समय तक उठाते रहेंगे। इसीलिए याद रखिए, जब आपका मन कहे कि आप थक चुके हैं, जब आपका दिल कहे कि ये आपके लिए सही नहीं है, जब आपकी आत्मा कहे अब बस, तो विनम्रता से, सम्मान के साथ, लेकिन पूरे आत्मविश्वास से कहिए, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या नहीं, ये फ़िलहाल मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सही समय पर ना कहना भी एक कला है। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक सवाल। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अगर आपने समय रहते ना कहा होता तो आपकी कोई बड़ी परेशानी टल जाती? आप सब सोचिए और ख़ुद को जवाब दीजिए। बस एक बात याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को दुखी मत कीजिए। सही वक्त पर ना बोलिए और खुश रहिए। तो दोस्तों, समय हो चला है एक गीत का, तो आइए सुनते हैं भूमि त्रिवेदी की आवाज़ में फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला से ये खूबसूरत सा गीत।
1: खूब खूब आभार अपना गुजरात में हालो मने नी आगर बहुत नाम नो गाम छे क्या मजूर वर्ग बहु छे तो मने एक गीत नी फरमाइश करी थी अने त्यां कई

दोस्तों, फिल्में तीन चीज़ों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसने हमें हंसाया ही नहीं बल्कि रुलाया भी है और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना भी सिखाया। तो लव इमोशनल ड्रामे से भरे इस क्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, अभी आपने सुना सोनू निगम की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुनते ही आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं अपनी सदी के सुपरहिट फिल्म कल हो ना हो की। दोस्तों, न्यूयॉर्क की भागती दौड़ती ज़िंदगी, एक उदास लड़की नैना, एक सच्चा दोस्त रोहित, और फिर उनकी ज़िंदगी में आता है एक ऐसा शख्स जो खुद दर्द में होता है लेकिन दुनिया को सिर्फ मुस्कुराना सिखाता है, अमन। अमन एक ऐसा किरदार जो कहता नहीं, महसूस होता है, जो अपने लिए नहीं दूसरों की खुशियों के लिए जीता है, और यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उसकी मुस्कान आँखों में और उसकी बातें दिल में रह जाती हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये त्याग की कहानी है, दोस्ती की कहानी है, उस सच्चाई की कहानी है जिससे हम सब कभी ना कभी रूबरू होते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए जो कहना है आज कह दीजिए, जो सपना है आज जी लीजिए, जिससे प्यार है उसे आज बता दीजिए, क्योंकि कल होना हो। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं शंकर महादेवन और रवि खोटे की आवाज़ में इसी फिल्म से ये अगला गीत।

दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए हर पल को खुलकर जीना चाहिए। इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे। शंकर एहसान लॉय के संगीत और जावेद अख्तर के गीतों ने इसे यादगार बना दिया। कल हो ना हो, प्रिटी वुमन, कुछ तो हुआ है और माही वे जैसे गीत आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। दोस्तों, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और ये फिल्म अपने दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही। तो आइए सुनते हैं साधना सरगम, उदित नारायण, सोनू निगम, सुजाता और शंकर महादेवन की आवाज़ में इसी फिल्म से ये अगला गीत।

दोस्तों इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इन तीनों के जीवन की सबसे लोकप्रिय प्रिय फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में शाहरुख खान ने अमन के किरदार को अमर बना दिया और इस फिल्म के एक डायलॉग ने पूरे फिल्म की नींव रख दी। हंसो जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये अंतिम गीत वसुंधरा के शान और लॉय मेंडोसा की आवाज़ों में।

0: फिल्म छाया के इसी गीत के साथ कार्यक्रम
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर

0: से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना।
5: पहुंचाइए घर घर आकाशवाणी, आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेठारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेठारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूलक क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी एमसीएडी मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जुलाई तक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 3 से 5 दिनों तक आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में 12 से 18 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के नए हाईटेक बस स्टैंड का शुभारंभ किया। इस बस स्टैंड में पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। दुर्ग पुलिस ने

अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। मौके से मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और करीब 23 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र के कोड़िया धान खरीदी केंद्र में आज आग लग गई। इस घटना में 100 क्विंटल से अधिक धान जलकर नष्ट हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर अभिजीत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में महासमुंद में कल संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेटारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आपको बताएंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आप ऋषिकेश गगुर्दे से ख्याल में गायन सुनेंगे। अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर होगा। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय है शाम 7:20 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा पेश करेंगे शाम 7:05 पर। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब जानते हैं हमारे कल के तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम गुजे जंगल में सरगुजिया लोकगीत। कलाकार होंगे नीतराम खड़गवंशी और साथी और निर्मल दास और साथी। इन साथियों से आप सरगुजिया लोकगीत सुनेंगे। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे भारतीय प्रसारण के महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किस्सा कहने। इसमें आप सोना गुफा शीर्षक पर कहानी सुनेंगे। संकलन और लेखन श्री सुदामा राम गुप्त का है। संयोजक नागेंद्र दुबे हैं। प्रस्तुतिकर्ता हैं शोभनाथ साहू। प्रतिभागी होंगे मृदुल गुप्ता, शोभनाथ साहू और कमलेश सिंह। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गीत का प्रसारण। गीतकार होंगे जे डी आर गौड़ा। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों के तराने कार्यक्रम नए तराने में और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर हाजिर होंगे सुबह 11:05 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। आप मन के गीत ये छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बहनों का कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय दिन में 1:10 पर आप सुन सकेंगे। बातचीत और फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने साथ ही सुनेंगे घर आंगन मेल। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा पेश करेंगे दिन में 2:30 पर। हमारे शाम की सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:30 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। इसमें आप सुनेंगे विषय होगा संपत्ति विवाद के संबंध में। वक्ता होंगे श्री आशुतोष द्विवेदी अधिवक्ता जगदलपुर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीकंदा।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा में लीजिए सुनिए चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल, शायर हैं इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी।

0: रहे हो, कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम रजनीगंधा में लीजिए सुनिए पयाम सैदी का कलाम, कविता पौडवाल की आवाज में।

तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है।

अभी आप पयाम सईदी का कलाम सुन रहे थे कविता पौडवाल की आवाज़ में, और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल।

0: अग्नु भैया राम राम।
1: राम राम बिरजू भैया।
0: और बताइए भाई, क्या हाल चाल है?
1: बिरजू भैया, हाल चाल तो देखा कहो जग भेंट घाट हुए नहीं तो एक ही को गोट हुए कि मौसम और कैसे करता है।
0: हाँ भाई, देखिए किसान कर तो भाई मौसम के हिसाब से चलते, तो वही सवाल पूछिए।
1: और किसान तो किसान जहर किसान नहीं है, तुम्हार भी मौसम ला देख के जरूर पूछे कि आजकल मौसम और कैसा रही, तुम्हार बाट कैसा मौसम है। अब देखा नहीं हमर कति ये कैल कितना बार बरखा हुई शाम के, शहर में अच्छा बरखा हुई, लेकिन कोनो कोनो कति कहे लागिन कि हमर कति नहीं है बरखा। और अभी देखा मानसून हर तो आइस नहीं है, मानसून में समय है।
0: हाँ।
1: लेकिन हमन कथी कि एगो अंग्रेजी शब्द में कि प्री मानसून।
0: हाँ।
1: मानसून को पहले कर बौछार नहीं, लेकिन यही और काम भेल खेती किसानी में।
0: हाँ।
1: जोताई कोड़ाई पर माला ज्यादा खेत और सूखा होगी से तेहर जोते पर काम दे पानी है।
0: हाँ बिल्कुल। और देखिए बहुत सारा जो किसान भाई हैं अभी से तैयारी शुरू कर दे, इन्हें खाद बीज और कुछ तो भी

0: थरहा भी डालत है, तो यही आशा में डालत है कि भाई मौसम बढ़ियन रही और बढ़ियन जो है हमार थरहा होई। लेकिन अग्नु बिया देखिए कभी कभी जी हर डराते कि भाई बारिश होई कि नहीं होई, ठीक होई कि नहीं, बीच में कहीं छोड़ दे तो आफत हो जाही। तो कहे कर मतलब है कि ये जो हमन देखत हन मौसम कर बदलाव, ये बदलाव कुछ समझ में नहीं आता है।
1: हाँ बिरजू भैया, हम भी देखते नहीं कि मौसम और बदले। और रौरे देखे कि 15 जून से हमन मानते कि बरखा शुरू हुई, बाकी 15 जून में से पानी हर नहीं बरसे, अषाढ़ है पूरा बीत जाए एक तरह से देखिया तो, जुलाई महीना से पानी बरखा शुरू हो। तो मौसम के जो एक परिवर्तन है, हमन देखा रहे कि पहले मई महीना से शुरू हो जाते इस बरखा, और धीरे धीरे जून महीना में पहुंचे, जून के बाद अब जुलाई महीना में। तो ये जो परिवर्तन आता है, और फिर आगू जाब तो हम उनका धान कटाई शुरू हो ले नवंबर महीना में, ते घनी पानी बरसत रहे। तो ये जो परिवर्तन आता है और खेती किसानी पर प्रभाव तो डालता है।
0: हाँ भाई प्रभावित तो करबे करी, अभी फसल खड़ा है बारिश हो जाते, कब गिन बारिश हो जाए पता नहीं चलते, कब आंधी तूफान आ जाते वो पता नहीं चलता है। तो और ऊपर ले तो गर्मी भी बढ़ाता है, और वैज्ञानिक मन कहता है कि भाई जलवायु परिवर्तन होता है, और जलवायु परिवर्तन होता है तो वैज्ञानिक मन कहता है कि गर्मी बढ़त है, और हम देखा था कि बढ़त है हमारे क्षेत्र में। अग्नु भैया पहले देखा तो कि इतना गर्मी तो नहीं पड़त रही नहीं रही, लेकिन अभी देखा था कि बहुत गर्मी पड़ता है। और हमन पूछा था कि भाई दूसरे शहर के का तापमान है, और अपन शहर के तापमान मिला था तो देखा था कि बराबर होगी से। तो कहे कर मतलब एक बात तो समझ में आते कि भाई यहाँ पे पेड़ पौधा पहले बहुत ज़्यादा रही, और अब कर स्थिति में पेड़ पौधा बहुत कम हो गई नहीं। तो एक बात तो यही समझ में आता है कि जो पर्यावरण कर बात है वह प्रभावित हुई से, चाहे वो जंगल कटाई कर बात कर ली या फिर खनन खुदाई कर बात कर ली। तो कई ठन पहाड़ी ला जैसे कि भाई आवश्यकता या जरूरत वो हिसाब से खोद डाली ने, पेड़ ला काट डाली ने। तो कह कर मतलब है हम ही मन कहीं ना कहीं एक पर जिम्मेदार ही कि भाई जो पर्यावरण है अमन कहीं नशा थन।
1: मतलब बिरजू भैया को बात है ना, ये बात ला ध्यान देख कोई कि हम पेड़ तो लगा लेबो, हरियाली ले आनबो, पेड़ लगा लेबो, शहर से लेके गांव तक पेड़ बन पूरा गोटा जितना हमन का रास्ता है और दोनों कति पेड़ दिखे के लागी। लेकिन जंगल कर जब गोट करती ना तो पेड़ लगाए सकत ही जंगल बनाए नहीं सकी।
0: हाँ यही
1: जंगल में कई प्रकार के चीज रहे, छोटे झाड़ी रहे, बड़े झाड़ी रहे, उनमें नाना प्रकार के चीज रहे, जो जायत चीज रहे, तो वो जंगल है जंगल चाहे ओकर जंगल कर आसपास रेंगिया तेकर अलग वातावरण रहे, और शहर जैसे पेड़ लगी सहे पौधा में लगी ना है वो जगह रेंगिया ओकर वातावरण अलग रहे।
0: नहीं ठोकेश कहते हैं अग्नु भैया, मैं कहता हूँ कि भाई जो जंगल के संरक्षित करना है या संवर्धित करना है तो उकरो बर तो उपाय करना पड़ी ना भाई, कि ये जंगल में चराई नहीं करना है, जंगल में नहीं जाना है, जंगल 10 साल छोड़ना है, कुछ तो उपाय करना पड़ी। अब जैसे गांव स्तर पे जैसे मान ली कि भाई जो वन सुरक्षा समिति है या फिर जो है वन प्रबंधन समिति है, तो भाई जो भी मतलब वन है उनकर आसपास ओके बचाए खातिर एगो योजना तो बनाना पड़ी कि भाई कौन कस जो है हमन अपन जंगल ला बढ़ा सकत हन, और कैसे संरक्षित कर सकत हन, कैसे सुरक्षित कर सकत हन, कैसे संवर्धित कर सकत हन, एकर बारे में एगो योजना तो बनाना पड़ी। ठीक है कि भाई जैसे वैज्ञानिक मन कहते हैं कि भाई ठीक है जो जलवायु परिवर्तन हुआ था भाई उतना नहीं तो कम से कम चाय रहना तो एकर मुकाबला हम कर पाबो।
1: हाँ, छोटे छोटे प्रयास से बात बने।
0: हाँ तो वही बात मैं कहता हूँ कि जैसे जो जंगल ला बचाना भी जरूरी है और नया लगाना भी जरूरी है, और एकर अलावा जो है भाई बहुत जब हमन पर्यावरण के बात करते हैं ना अग्नु भैया, तो मैं बहुत सारा चीज़ आता है, मिट्टी भी आ जाते, हवा भी आ जाते, पानी भी आ जाते, पेड़ पौधा पहाड़ मिट्टी सब झन आ जाते हैं, सब जाता जाते हैं। तो ये सब के हमन के जो है सदुपयोग करना है और बुद्धिमता पूर्वक प्रयोग करना है, ताकि जो है ये जो मौसम के प्रभाव हमन देखत हन हमारे ऊपर कम हो सके, और हमन थोड़ा सा लड़ाई लड़ सकी। और ये लड़ाई पर जरूरी है कि पूरा सामुदायिक जो कहली जिम्मेदारियां है
1: सहभागिता,
0: हाँ वो ओकर बड़ा जरूरी है। और मैं कहता हूँ कि देखिए जब जलवायु परिवर्तन होते तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो किसान ही छो ही, कहे कि जो मान लिया जैसे वैज्ञानिक मन कहता है कि भाई जो है कृषि जो है कैसे प्रभावित हुई, तो भाई मान ली कि ज्यादा गर्मी बढ़ गई तो भी अंकुरित नहीं, ज्यादा ठंडा बढ़ गई तो भी अंकुरित नहीं हुई, फसल बढ़ पाई जितना तापमान
1: मौसम पर रहे। ठीक कहती है मौसम का सीधा प्रभाव खेती पे पड़े और किसान पे पड़े, तो ये बदलत मौसम ला हमला समझ के

0: और बिरजू भैया जैसे खेती पाती कर बदलाव भी करना है हमन ला, तो ओला भी हमन करी कि अगर हमन ला अंदेशा है कि कम वर्षा है बार कम पानी गिरही तो हमन वही हिसाब से खेती करी। हमन मक्का मला ज़्यादा लगाई, दलहन मला ज़्यादा लगाई। हमन केवल और केवल तो धान ला सोचब नहीं कि खाली धाने से लगाब, बरखा हो धान ला लगाब, तो हमन ला थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ी। बदलत मौसम के साथ हमन खेती ला बदलब, तब हमन ए दे बदलत मौसम में जो खेती में जो प्रभाव पड़त है ओकर से लड़ सकब।
1: बिल्कुल, अब कम अवधि के धान लगाएं, जो भी किस्म है वो हिसाब से लगाएं। और मैं कहता हूँ कि यदि रोपा पर भाली उतना पानी नहीं मिला थे तो थोड़ा सा छिड़कवा खेती पे ज़्यादा ध्यान दें तो वह एक उपाय हो सकत है। तो ये तरह से किसान भाई जो हैं बदलत मौसम के सामना कर सकत हैं। और भाई ये तो भाई देखिए, अब जो प्रकृति है उसके सामने हमन के मुकाबला करना पड़ी और वो हिसाब से हमन के चलना पड़ी।
0: बिरजू भैया एक और गोटा है कि भाई हमन देखती नहीं कि दूध हर हमन कर जीवनदायी नहीं है एक तरह से।
1: बिल्कुल,
0: और बढ़िया अगर गाय रहते हैं, बढ़िया दूध देते हैं तो जीव में लागल कि भाई हम उनका खेती के संगे संगे बहुत बड़ा सहारा है।
1: बिल्कुल,
0: तो एक बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी एगो चलता है, 2014 में भारत सरकार है शुरू करे रही, और तब से हम अभी तक देखा था कि जो गौ वंश हैं जिनमें भैंस है, गाय है, चाहे बकरी है, जितना भी पशु हैं हम उनका जेकर से हमें दूध मिले ओला उनकर रख रखाव, उनका संवर्धन, उनका संरक्षण पर काम करल जाता है। तो देसी गाय होगी चाहे भैंस होगी, सुमन कर उत्कृष्ट नस्ल कर विकास करे पर नया नया तरीका से कृत्रिम गर्भाधान करता है, दूध उत्पादन बढ़ाए पर काम चलता है, और बहुत सारा ऐसा हम उनके जो विलुप्त हो जाते हैं देसी प्रजाति के गाय मन ओमन ला भी संरक्षण करके और मतलब देसी नस्ल के साथ उमन कर कृत्रिम गर्भाधान करके ओमन से दूध ज़्यादा उत्पादन करे कर भी क्षमता विकसित करे कर काम चलता है।
1: तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है एकर से हम सहायता ले सकते हैं, हमें कुछ छूट भी भेटा थे कि?
0: हाँ, छूट भी भेटा थे। मैं देखा केंद्र सरकार कर, राज्य सरकार कर, सब अलग अलग जो अनुदान रहे और तो मिलवे करेल, साथ में और भी यह है कि गोकुल ग्राम की स्थापना कर देना है जहाँ देसी नस्ल के जो संरक्षण संवर्धन पर काम चलता है उकर एगो केंद्र बन जाए, साथ में एगो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कर भी स्थापना एक तहत होता है। मैं बताया नहीं कृत्रिम गर्भाधान होता है हर जगह, बेहतर जो नस्ल के पशु जन्मे ओकर पर काम होता है और ज्यादा से ज्यादा 90% की बछिया जन्म ले है।
1: अच्छा,
0: ऐसा भी कृत्रिम गर्भाधान अभी जो नस्ल सुधार में चलता है, तो ये सब काम में चलता है। और ज्यादा से ज्यादा जैसे गिर होगी, साहिवाल होगी, स्थार पार्कर होगी, रेड सिंधी होगी, सराठी होगी, से नस्ल मनकर विकास,
1: देसी विकास,
0: हाँ देसी विकास तेजी से चलता है।
1: बढ़िया बढ़िया। तो बताएं रोडे कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है सरकार भी ध्यान देते हैं और हमारे जो किसान भाई हैं योजना के जरूर फायदा उठाएं। तो अग्नु भैया, मैं कहते रहे कि अब समय होगी से हमारे कार्यक्रम
0: किसान वाणी चला जाए।

0: किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू किसान भाई मनकर स्वागत है और अग्नू भैया हमारे साथ हैं। तो अग्नू भैया, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है वो में हम देखी हमार जो किसान है उनकर से जो गोट बात हुई से ओला तो सुनवाबे करब और विशेष कर जो गीत है और आज विशेष जो है जोग लिखी है तो किसान भाई मन के सवाल के जवाब तो होबे करी। मैं कहते रहन कि ये किसान जो है भाई खेती के साथ साथ ओकर से जुड़ल जो व्यवसाय है वो कि करत है तो भाई मान ली कि भाई खेती खार में कभी कभी नुकसान हो जाते तो जो दूसर व्यवसाय रहते ओकर से उकर भरपाई हो जाते।
1: हम देखते हैं कि हम उनका जो ग्रामीण परिवेश है जो हम उनका गांव है वहाँ देखिए अगर कोई किसान है तो उनका घर में एक दो गो जरूर दूध दे वाला गाय रहते हैं और ओला चारा पानी खवात रहते हैं और कम से कम बिक्री करे पर नहीं तो घर परिवार पर जो पौष्टिक दूध मिले।

0: ओकर उत्पादन तो करिए धारत हैं।
1: हो बढ़िया बात है।
0: और सबसे बड़ा चीज़ है कि अब किसान भाई मन भी जानत है कि खेती पाती में कभी धोखा हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो ऐसा स्थिति में अगर संगे संगे अगर दूध पालन करल जाए और दो गो चार गो छः गो दस गो गाय रखल जाए तो हर बराबर किसान भाई मतलब सहायता करे।
1: बिल्कुल।
0: और किसान भाई मन बात ला जान गिन है ओकर से देखा नहीं तो हर किसान हर आजकल दे गौशाला स्थापित करता है और वहाँ दूध उत्पादन करता है। वही कारण है कि शहर में भी देखिए ना तो जो दूध आता है बहुत तेजी से वो धीरे धीरे बढ़ी सा है। हर किसान के पास दो गो चार गो गाय है, अपन खाए कर बाद 5 लीटर 10 लीटर जो दूध बचत है वो हर बाजार में आते है।
1: बड़ा बढ़िया बात है। और देखिए दूध बाजार में आते है, दूध उपलब्ध होते है, बढ़िया बात है। और लेकिन अग्नु भैया देखिए हमन कोई पशु पालथन यदि अच्छा दुग्ध उत्पादन लेना है तो भाई ओकर खान पान भी बढ़िया रहना चाहिए।
0: हाँ हमन देखते कि हम बाजार कर जो पशु आ रहे ओकर भरोसे में रहती और इतना महंगा है कि किसान भाई मन कई बार सोचते हैं कि इतना तो मोर दूध उत्पादन नहीं हो जितना मैं पशु आहार खवाता हूँ।
1: हो
0: तो बोरा में ले के तो जाते हैं लेकिन खवाए देखते हैं तो पता चले इसकी उम्र तो दूध और बढ़ भी नहीं करी। तो किसान भाई मतलब खुद से जो संतुलित पशु आहार है ओकर महत्व ला समझ के ओकर उत्पादन खुद से करना पड़ी।
1: बढ़िया बताएं।
0: और हम देखे कि अगर पैरा हमर जो होगी हमकर गांव में देखिए अगर ज़्यादा किसान भाई मन जगह दे धान हो तो पैरा रहे और वो पैरा ला खवात खवात जो हम उनके गाय रथ हैं किसान भाई उनका गाय रथ हैं उनका दांत हर भी खिहाई जाए नहीं और उत्पादन भी कम होल दूध और धीरे धीरे उनका शरीर भी सूख जाए। तो पैरा भी आए अगर किसान भाई बन जाए तो वाला पैरा कुट्टी काट लें और अगर खेत बाड़ी है ही है किसान भाई बन जाए तो मतलब बरसीम लगा लें हरा चारा।
1: बिल्कुल
0: नहीं और कई गो घास हैं लोबिया है बरसीम होगी जई होगी ज्वार होगी से मल्ला लगाए के मक्का हम
1: मकई
0: लीची पर सला हरा चारा मिलाए के अगर खवाही तो गाय हर चाव से खाही और दूध भी दही ज्यादा।
1: बढ़िया बताएं। तो भाई हरा चारा तो बड़ा जरूरी है और हरा चारा जैसे रोरे बताएं भी कि किसान भाई जो है थोड़ा सा एरिया मतलब क्षेत्र में लगा लें जैसे बरसीम लगाएं तो कई बार काट सकते हैं। अभी मकई के सीजन है तो अभी मकई लगा लें है ना, या फिर जो हाथी घास होते हैं वो तो हमेशा लगे रहते तो वो के काट काट के हरा चारा से क्या होता है कि थोड़ा सा चारा जो है सुपाच्य होता हो जाते हैं। जैसे हम दाल भात खाते हैं तो तनिक अचार खाते हैं ना तो भाई देखिए अच्छा चीज़ हर बढ़िया पस्त थे तो उसने हरा चारा यदि मिला के दे भूसा के साथ चाहे वो पैरा कर भूसा हो चाहे गेहूं कर भूसा हो तो मिलाए कि से क्या होते कि भाई हरा चारा से कई तरह के प्रोटीन विटामिन मिनरल्स मिल जाते तो ओकर से कहा तो शरीर कर भी पूर्ति हो जाते और दूध उत्पादन कर क्षमता भी बढ़ जाती
0: है। आजकल तो देखिए नहीं जो पशुपालन बढ़िया करत है ओमन बरसीम से आगू बढ़ गई है। बरसीम लग कहते रहें कि भाई अच्छा प्रोटीन वाला हरा चारा ओला अगर कहीं जब 5 डिसमिल में लगाए देना है तो और 4 गो 5 गो जो पशु है वो पर्याप्त रहे। एक कति लुवत जाते हैं 2-3 दिन में फिर और बड़ा हो जाए तो 3 से 4 बार ओकर कटिंग हुए और इतना बढ़िया पौष्टिक रहे कि अगर 1-2 किलो भी एगो पशु ला खवाए दें संगे मिलाए के सूखा चारा के साथ तो और पर्याप्त हो जाए। और एक संगे संगे किसान भाई बहन आजकल हरी शैवाल ला लगाते हैं गढ़ा खेल लेते हैं उनमें प्लास्टिक अगर पक्का कर हम कर नहीं है गढ़ा तो उन्हें क्या करते हैं कि प्लास्टिक ला ढाप देते हैं रख देते हैं उसमें पानी भर दही तहाँ जो शैवाल रहे हरी शैवाल वाला डाल देते अजोला ला और उनमें से रोज निकले नहीं आधा किलो 1 किलो का निकलता है बोला जो सूखा चारा हमें मिला के खवा दही तो और सर्वाधिक प्रोटीन युक्त है और दूध उत्पादन पर बहुत वाला अच्छा माना जाता है।
1: अब बढ़िया सस्ता भी है सस्ता है करके कि भाई तनिक पानी का टब थोड़ा सा बनाए लेना है वही में उगाना है और पशु मल्ला खवाना है तो संतुलित आहार में देखिए हरा चारा तो बहुत जरूरी है अग्नु भैया। एक साथ साथ जो है दाना भी बहुत जरूरी है जो पशु दूध देता है भाई शरीर के मेंटेनेंस करे खातिन भी चारा चाहिए और दूध उत्पादन करे खातिन भी चारा चाहिए तो जैसे भाई गाय होगी तो के 2 किलो चारा दाना जो है देना जरूरी है भैंस होगी तो 2.5 किलो दाना देना जरूरी है। तो कहे कर मतलब है कि जो पशु दुग्ध उत्पादन करत है ओके जो है दाना बहुत जरूरी है एकर साथ साथ जो है खली भी बहुत जरूरी है एकर साथ साथ जो किसान भाई हैं नमक भी जो है 15 दिन 1 महीना में दे दें पशु मल्ला ताकि उमन के जो पाचन जो है बढ़िया बनल रहे और संतुलित पशु आहार कर हमन बात करा तो कई तरह के और भी विटामिन या कैल्शियम जो होते हैं वो समय समय पर देना चाहिए ताकि पशु के दुग्ध उत्पादन में कमी झेल आए।

0: तो संतुलित पशु आहार से जो है किसान भाई जो है बराबर दूध उत्पादन ले सकते हैं और बढ़िया लाभ कमा सकते हैं।
1: लाभ कमाकर गोट कर नहीं बिरजू भैया, तो वह बात हम कहना चाहब कि किसान उत्पादक संगठन आजकल बनता है।
0: अच्छा,
1: FPO संगठित किसान कथे नहीं और मजबूत होकर आधार। तो किसान मन आजकल, पहले तो भाई अगर कोई किसान टमाटर लगा ले ही 16 ओकरे जिम्मा हो जाए कि एक जन ले इसके बाजार बेची मंडी एक जन बेची, लेकिन आजकल पूरा समूह में खेती करता है, किसान मन संगठित होता है और एक राज्य से दूसर राज्य तक किसान मन कर आपस में जान पहचान संगठन बन गया है और वो माध्यम से जो उनका उत्पादन है ओकर बढ़िया दाम भी मिलता है और बाजार भी बढ़िया मिलता है।
0: बढ़िया बताए ना। और देखिए अग्नु भैया, मैं कहता हूँ भाई संगठन में शक्ति होते हैं, तो जब हम एका हो जाता एकता हो जाता और एक साथ खेती करता तो देखिए हमर जो कहकर अंग्रेजी में कहते हैं बार्गेनिंग या सौदेबाजी करे कर जो क्षमता है ना वो हर तनिक बढ़ जाते। काबर कि भाई मान ले उदाहरण के तौर पे मान ले कि रे हमन कुछ हमर जो FPO है या किसान उत्पादन संगठन है, हमन जो है 500 किसान है 1000 किसान ही और मकई उत्पादन करत हन ये क्षेत्र में, तो कह ली कि भाई अब इतना मक्का होए के बाद हमन सीधा जो है कंपनी से बात कर सकत हन या फिर कोई बड़ा एजेंसी से बात कर सकत हन और बढ़ियन जो दाम है वो दाम जो है हमला उपलब्ध हो जाते। लेकिन जब वही बात हमन करते हैं कि भाई अलग अलग दिए हमन हो जाबो, तो भाई मान ले कि मोर जग 10 क्विंटल मकई होइस मोर जग 5 क्विंटल होइस, वही मकई के जब लेके हमन दुकान में जाबो कोचिया जग जाबो तो का होते कि वो हर अपन रेट लगाते, तो वो हिसाब से मजबूरी में हमन ला वो रेट बेचना पड़े। तो कहे कर मतलब है कि जब हमन एकता या एक साथ खेती करते हैं कोई विशेष फसल के या फिर कह ले कि भाई एक साथ हमन आथन तो भाई एकर हमन रजिस्ट्रेशन भी करा लेथन और एकर बाद जो है हमन कह ले कि लाभ भेटाते। लाभ एमे भी आ है अग्नो भी आ कि भाई देखिए मान ली कि भाई हमन 500 किसान हैं और मकई बीज चाहिए, तो भाई 500 किसान के मकई बीज तो 1-8 टन से अधिक हो गई, तो अब वही बीज ला यदि हम कंपनी जो कंपनी बीज देते हैं वो कंपनी ला हम बोलबो कि भाई इतना बीज चाहिए थोक में चाहिए, तो थोक में तो भाई आधा दाम पड़ी ना जो हम बाजार में खरीद था। तो कहकर मतलब है कि एक तो भाई हमारे पैसा भी बची, हमर जो है अपन सामान ला भाई बढ़िया दाम में बेच पाबो,
1: उत्पादन करत है बिरजू भैया बोला हम ब्रांडिंग भी कर सकत ही, ओकर पहचान भी कर सकत ही, ओकर मूल्य ला संवर्धित भी कर सकत ही।
0: बिल्कुल,
1: तो हमन कर जो उत्पादन है ओकर हमन नाम भी दे सकत ही, तो बोला देश दुनिया में जाने कि भाई कौन इलाका का है कौन सा चीज है कौन सा उत्पादन है।
0: बिल्कुल, तो अग्नु भैया मैं कहता हूँ कि देखिए गुड बात तो चलत रही, तनिक मनोरंजन हो जातीस तो बढ़िया रहतीस। और देखिए एगो लोकगीत है जो लगाता है मोहम्मद खलील, तो आइए लोकगीत ला सुनल जाए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वयं

0: सुरक्षा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ अग्नु भैया।
4: हाँ बिरज भैया,
3: ये देखिए गीत ला सुनत रहें और मैं कहता हूँ कि भाई हमर जो किसान भाई हैं खेती के साथ साथ और भी उद्यम करत हैं, उकर साथ में जैसे रोड़े अभी हमन गोटियात भी रहें कि पशुपालन करता है और नकदी फसल भी ले आता है और नकदी फसल से भी लाभ उठाते हैं, मछली पालन से लेके मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन सब करता है। और देखिए आज कर जो हमारे कार्यक्रम है नकदी फसल, अगर मैं रोड़े गोट बात करे ही हमारे जो किसान हैं प्रकाश यादव जी, जो कि मशरूम कर बड़ा बढ़िया खेती करत हैं।
4: हाँ हाँ हाँ।
3: और मशरूम उत्पादन करके बढ़िया लाभ कमात हैं और देखिए मशरूम के उत्पादन भी बढ़िया धीरे धीरे बढ़ता है। तो इनकर से जो गोट बात रोड़े करे ही तो आइए गोट बात ला सुनल जाए।
4: लगे तो सुनल जाए।
5: किसान भाई हो, आज हमने देखा आए ही एगो ऐसा किसान जग जो व्यवसायिक खेती करते हैं और ये पूरा इनका नाम भी खूब है। पहले कोरिया जिला के बैकुंठपुर में रहत रहीन, अब अंबिकापुर में भी उनका निवास है और मशरूम कर बढ़िया काम करते हैं और इनकर से हम गोट बात करब। रौरिया अपन नाम ला बताई।
6: प्रकाश यादव। मोहन
5: प्रकाश यादव जी, रौरेला बहुत साल से हमने देखा थी कि अंबिकापुर शहर में मशरूम कर केंद्र जो है वह तुम्हार है, अगर तुम्हार दुकान बंद रहे तो मशरूम खवैया मन परेशान हो जाते हैं कि भाई मशरूम कहाँ ले मिली। तो कैसे काम ला शुरू करें?
6: पहले तो बस मजबूरी से पान दुकान कर रहे थे, उसके बाद फिर हमको टीवी में देखने को मिला कि मशरूम का खेती अच्छा है, इससे अपना मैं मशरूम का खेती के लाइन में उतर गया।
5: तो कहीं कहीं से खरीद के ला था कि खुद से लेते?
6: अपने घर में ऑयस्टर मशरूम उगाते हैं और बटन मशरूम मंगा के बेचते हैं, लेकिन ऑयस्टर मशरूम ही अच्छा मशरूम है, उसको मैं अपने घर में ही लगाता हूँ।
5: कैसे कैसे तैयारी करता है?
6: इसको घर के अंदर रूम में लगाया जाता है और पॉलीथीन में भरा जाता है, गेहूं का कुट्टी हो चाहे पैरा का कुट्टी हो, उसमें बीज यहीं पर बायोटेक अंबिकापुर बायोटेक लैब से मशरूम का बीज लेते हैं और उसमें खेती करते हैं।
5: तो कितना बड़ा जगह में बनाए हैं?
6: पहले तो छोटा सा जगह रहा, लेकिन जैसे जैसे बिक्री बढ़ते जा रहा है उस तरह से बड़ा बना लिया हूँ। 20x40 का दो दो ठो हॉल बनाया हूँ। 20x40 का दो ठो हॉल बनाया हूँ जिसमें मैं मशरूम का खेती करता हूँ।
5: कैसे कैसे कर तैयारी करता, कैसे शुरुआत में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़े?
6: शुरुआत में गेहूं कुट्टी है तो ठीक है, पैरा कुट्टी है तो ठीक है, दोनों में होता है। और उसके बाद इसको उपचारित किया जाता है, गर्म पानी में उबाल करके भी किया जाता है और रासायनिक कुछ केमिकल भी आते हैं बाजार में उससे भी, लेकिन अच्छा होता है पानी में उबाल के करने से।
5: तो हम कभी कभी देखते हैं कि नया जो रहते हैं उनकर जो पैरा कुट्टी है चाहे भूसा कर कुट्टी है, गेहूं भूसा कर कुट्टी, उसमें फफूंद जैसा पड़ जाए तो कई बार उगे नहीं, तो और का विधि अपना थी?
6: देखिए वो गलती होगा बीजा का या रूम का टेम्परेचर का, इसमें रूम का टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री तक रहना चाहिए।
5: तो टेम्परेचर ला मेंटेन करे बर कैसे करती है?
6: अगर रूम में बालू डाल देते हैं और पानी डालते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है और कूलर से भी एडजस्ट आदमी कर सकता है, रूम में एग्जॉस्ट फैन लगा देना चाहिए।
5: कितना साल से काम ला कैसे शुरू करें, इतना लंबा समय से करत ही, अभी उत्पादन कितना होता है?
6: अभी मैं उत्पादन 25-30 किलो रोज करता हूँ

0: तो 5-10 किलो उधर बेचता हूँ, 15-20 किलो यहाँ बेचता हूँ। मेरे घर से भी मशरूम बिक जाता है और यहाँ पर भी बेचता हूँ।
1: लगभग कितना अगर महीना के कमाई ला देखा जाए कर, तो अनुमानित अगर बढ़िया से कर आदमी करे तो कितना कमाई हो सकता है महीना में अनुमानित?
0: देखिए, बढ़िया से करने से तो नहीं कुछ होगा। बाजार भी अभी इसका क्या है, ऑयस्टर मशरूम का बाजार थोड़ा कम है, लोग जानते हैं बटन मशरूम को, लेकिन ऑयस्टर मशरूम में ही प्रोटीन पाया जाता है। डॉक्टर के सलाह से ऑयस्टर मशरूम अच्छा होता है, लेकिन दुनिया बटन मशरूम

0: एक महीना के अंदर मशरूम निकल जाता है।
1: तो पैकेट बना के फिर बाजार में ले आता है।
0: हाँ, पैकेट बना करके बाजार में लाते हैं, उसको अगर मेरे पास ज़्यादा रहता है तो 2 रुपया कम कर देते हैं, मेरे पास कम रहता है तो 2 रुपया बढ़ा के बेचते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स रेट है, 150 और 200 के बीच में बिक जाता है। 150 से 200 रुपये किलो के बीच में बिकता है।
1: तो अकेले करता है परिवार के सदस्य?
0: पूरे परिवार, हम लोग पूरे परिवार इसी में जुड़े हुए हैं। हम लोग मतलब 2 भाई इसी में जुड़े हुए हैं।
1: पढ़ाई लिखाई रोड कहाँ कर रहे हैं?
0: पढ़ाई लिखाई बैकुंठपुर सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय।
1: तो पढ़ाई लिखाई करके देखा ये लाइन में आया, और कहीं काम करती?
0: नहीं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद थोड़ा सा स्थिति के कारण पान दुकान कुछ दिन चलाया, उसके बाद पान दुकान से अब बड़ा परिवार होने के कारण, शादी ब्याह होने के कारण, सब परिवार की संख्या बढ़ने के कारण मशरूम को लाइन में चुना और इसी में अपना रम गया।
1: रोर का तो बहुत नाम है, हम देखती कि कहीं भी अगर प्रदर्शनी भी लगी से तो रोरे कर मशरूम और पहुँच जाए। और हम रोरे से जहाँ जगह वेट कर रहा थी, जहाँ जगह रोर बैठ के बेच थी, वो जग भी ग्राहक मन आज जाते हैं, पूछते हैं मशरूम है का, तो रोले फुर्सत भी नहीं है। तो बाकी खेती से ला कैसे मान थी?
0: बाकी खेती भगवान के ऊपर है, ये भी सब तो भगवाने के ऊपर है, लेकिन इसके लिए जमीन का जरूरत नहीं पड़ता है, जितना है उसी में अपना संतोष कर सकता है आदमी। चाहे तो घर बैठे मतलब 10,000 रुपया महीना एकदम कुछ नहीं करेगा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को भी मेहनत करेगा तो 10-15 हज़ार रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है।
1: कोई नया लड़का मतलब प्रशिक्षण भी देता का?
0: मैं यहाँ अपने से प्रशिक्षण नहीं देता हूँ, यहाँ अंबिकापुर बायोटेक लैब है, वहाँ प्रशांत सर मुझे बहुत मदद करते हैं और वो जहाँ प्रशिक्षण देते हैं वहाँ मेरे को ले जाते हैं और मैं लोगों को दे देता हूँ।
1: आज कितना अगर हम पूछी तो आज कितना मशरूम लेके आए ही?
0: आज लाया रहा 12 किलो घर वाला और बटन मशरूम आता है 2 पेटी 3 पेटी।
1: अभी क्या रेट चला थे बाजार में?
0: अभी जैसे बताया ना कि ऑयस्टर मशरूम 150 और 200, कभी 180 में दे देते हैं, कभी 400 रुपये पैकेट देते हैं, कभी मजबूरी बस में 3500 रुपये पैकेट देते हैं, 3600 रुपये पैकेट देते हैं, 35 और 40 रुपये के बीच में ही बेचते हैं।
1: और होटल वाला मन भी संपर्क करते हैं क्या?
0: होटल मन भी संपर्क करते हैं
1: और कई के ककरो ककरो घरे शादी पार्टी रहे,
0: शादी पार्टी में भी बहुत जन ऑर्डर देते हैं, देता हूँ।
1: मतलब काम हर रोरे बढ़िया चलत है, मन लगा के करत ही रहोगे?
0: मन लगा के।
1: तो एकर बर जो संसाधन विकसित करे है, पानी कर भी जरूरत पड़त हो, पानी कर का व्यवस्था करेगी?
0: हम लोग तो भाई नगर पालिका का पानी से ही अपना जीवन कट जा रहा है, 2 कनेक्शन है 2 भाई का, तो उसी से अपना जीवन कट जाता है।
1: तो भूसा अगर नहीं मिले गेहूं कर तो का करती?
0: पैरा कुट्टी, पैरा वाला चावल,
1: दोनों में का हर बढ़िया रहे, पैरा कुट्टी हर की भूसा?
0: ठंडी के समय में पैरा कुट्टी भी ठीक है, थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहता है तो गेहूं कुट्टी ठीक रहता है।
1: तो अभी फफूंद आए के भी कुछ समस्या रहे का, कुछ परेशानी भी आयल का?
0: वो देखिए थोड़ा मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ा बहुत होता है और बीजा खराबी रहने के कारण ही होता है।
1: ज़्यादा उत्पादन कौन सा मशरूम में होल अगर देखी तो, कौन सा जो प्रजाति है जिसमें उत्पादन ज़्यादा होल? रौरी इतना साल से कर थी जाना तो
0: मशरूम का ज़्यादा उत्पादन है और बटन मशरूम के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, एसी रूम का जरूरत है, टेम्परेचर के लिए जरूरत है, एग्जॉस्ट फैन का जरूरत है, कूलिंग मशीन जरूरत है। वो बटन मशरूम बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं।
1: करोरी इतना बढ़िया काम वाला अपनाए ही, बताएं कि सेंट्रल स्कूल में पढ़े ही तो हिंदी अंग्रेजी सभी ले जानती, सरगुजिया भी बढ़िया बोला थी, तो आने का ही नौकरी उकरी में नहीं सोचें ट्राई करे? वर
0: नौकरी के ट्राई करे के तो सोचिस रहे, लेकिन डर लग गई खदान के नौकरी देख के, हमन के डर लग गई तो छोड़ दी।
1: तो अपन काम लग कर थी, नाम भी रौरे कर है। कहीं कहीं मशरूम ला लेके प्रदर्शनी में बाहर भी गए का? कहाँ कहाँ?
0: मेन पार्ट प्रदर्शनी में गया हूँ, रायपुर प्रदर्शनी में गया हूँ, यही राज्य उत्सव में कितने बार बहुत बार लगाया हूँ और जहाँ भी प्रशांत सर बोलते हैं चाहे शासन बोलती है वहाँ जाता हूँ।
1: देखा कितना बढ़िया उत्साहित होकर रौरे काम कर थी। आज रौरे से बातचीत हुई, सुनैया किसान भाई मन है, नया युवा मन है, उमन भी राउर लसुन के प्रेरणा लें, राउर से सीखी, राउर जो गोठ हुई प्रकाश यादव जी, राउर का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ देखिए बिरजू भैया, बढ़िया गोल बात ला तो सुने, कितना उत्साहित होकर बात कर तो इनबकी अब जुआ रहे कि हम मंडी भाव लो बताते हैं।
1: तो देखिए आजकल जो बाजार में मंडी भाव जो रही उसमें गेहूँ रही 3,350 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो रही 3,300 रुपये प्रति क्विंटल, चना रही 8,500 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों रही 5,500 रुपये प्रति क्विंटल।
0: और मौसम को गौर करें तो आजकल जो अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री, कल अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने की संभावना है। और संगे संगे आजकल सवाल आप पूछ दी थी, आज हम गौर बात कर रहे हैं कि भाई किसान उत्पादन संगठन कर का लाभ है, वोकर बारे में बताए ही, तो एक से जुड़ा सवाल है, तो किसान उत्पादन संगठन बनाए से का दू प्रमुख लाभ है, ओला लिख के भेजी तो जवाब ला हूँ कार्यक्रम में देवो।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

नमस्कार, स्वागत है सोशल मीडिया की गूंज प्रोग्राम इंस्टा फरमाइश में। और आज आपके फरमाइशी गीतों को सुनवाने के लिए आपके साथ हूँ आपकी रेडियो हम सफ़र रहना। तो श्रोताओं, आप बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार है ना? तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की पहली फरमाइश के साथ। और ये पहली फरमाइश का गीत है फिल्म अनुरोध से। किशोर कुमार की आवाज़ है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और इस गीत को सुनने के लिए आकाशवाणी अंबिकापुर के सोशल मीडिया के पेज पर पोस्ट करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, अनम अब्बासी, सुहेल और यशफ अब्बासी, ग्राम पंचायत कसकेला पोस्ट सलका से शेष कुमार सिंह, ज्योति सिंह, सेजल सिंह, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्बई सिल्लौड छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़ के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़ के, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़ के, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा से आप हैं प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, रूप साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा। और इसी गीत को सुनने के लिए

हमें फरमाइश भेजने वाले श्रोता है ग्राम पंचायत परसा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश राजवाड़े, यामिया राजवाड़े, आदिया राजवाड़े, पार्थ राजवाड़े, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढिंगरा, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल और मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जस्मीन सकीला, सना हिना राजिया सुल्ताना अंसारी और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े, मंजू राजवाड़े और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, वरिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्ना परमार, हर्ष दीपल और उदयपुर राजस्थान से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत और बाबू भाई, और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही महराजहाँ, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आशिफ शेख और बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष जोड़ा पीपल, अंबिकापुर से स्वरूप आनंद सरजाल, चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत रामानंद, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नौहाकर, निर्मला नौहाकर, विशाल सोपान तांडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राम कुमार खर्चे, आशीष मोहेकर, ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकीब पवार, अलमाज बानो और पवार मोइन, छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, मोहम्मद हसनैन पवार। तो आइए आप सभी के अनुरोध पर सुनते हैं फिल्म अनुरोध का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

जी हाँ श्रोताओं, ज़िंदगी में यूं ही इत्तेफाक होते रहते हैं और यह इत्तेफाक ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तभी तो ज़िंदगी किसी गीत में मुस्कुराती है, कभी किसी धुन में पुरानी यादें जगाती है, तो कभी कोई गाना सीधे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे जाता है। और जब आपकी पसंद, आपके जज्बात और आपके दिल की आवाज़ हमारे पास पहुँचती है, तो बनती है एक ऐसी महफिल जहाँ सुर भी अपने से लगते हैं और एहसास भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म डॉन का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीत इंदिवर ने लिखे हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं ज़िला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबेहा अनस और रेहान, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, अदार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी वर्मा और इसी गीत को सुना चाहते हैं रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से ऋतिका मस्किन,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, जहां हर फरमाइश बन जाती है एक प्यारी सी याद। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भेजे गए आपके संदेश बनते हैं खूबसूरत संगीत का सफर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर और आपको सुनवाते हैं फिल्म पुलिस पब्लिक का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीत राम लक्ष्मण का है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घूरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष और जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रगेश और प्रीतेश संघई, ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नुखेलाल वर्मा और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। इसी गीत को सुनना चाहते हैं इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा, शेफाली, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, गांव खोखरा वाले श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा, बखर पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान, कुम्हारगले श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी

दले ऋषिकेश दले, जीविका बल और सानिका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। आप श्रोता हैं चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोड़हा गासी। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और भागलपुर ओसूद से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती और सुनीता देवी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्मी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह और राजकमल। रेडियो श्रोता आष्टी, जिला जालना, मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद नोयान और धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। पद्मा टॉकीज नेपानगर, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी साहब। और गुंगावा जिला खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री। और मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनी जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म पुलिस पब्लिक का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में।

जी हाँ श्रोताओं, जब भी आपकी फरमाइश इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में शामिल होती है तो आकाशवाणी अंबिकापुर से आपका जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। इंस्टा फरमाइश एक ऐसा ही खूबसूरत कार्यक्रम है जो आपके नाम के साथ आपकी पसंदीदा फरमाइशों को लेकर आता है। तो अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं फिल्म नूरी का गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं जानेसार अख्तर और संगीत है खयाम का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी फवारा चौक सिरसिला जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह, सोनगरा प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा और कार्तिक, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, गांव फ्रांसिस जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, मिठू मोड़ा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गिंदू भाई, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज और मिथिलेश यादव, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। और इसी गीत के लिए

हमें फरमाइश किया है। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य ने, ग्राम लसूड़िया पाता तहसील जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। इसी गीत को सुनना चाहा है बनियापारा धामतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोटवानी और रामचंद्र खंडवा, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी, पेंटर बाबू और इसी गीत को सुनना चाहते हैं शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से श्रीमती कमला देवी महोबिया, अनाया महोबिया, भैयू महाराज और बेबी लोसियान बी। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहते हैं दिल शाद हुसैन, फातिमा सोगरा वकार, हैदर कनी सकीना, हसीना और दिल साद वसीम फातिमा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म नूरी का गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में।

श्रोताओं, हर गीत सिर्फ शब्द और संगीत नहीं होता। कुछ गीत हमारी कहानी के ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें हम बार बार बार बार पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, आपने अपने फरमाइशों में ऐसे गीतों को पसंद किया है कि हम अपने प्रोग्राम इंस्टा फरमाइश में ज़रूर शामिल करना चाहते हैं। और अब शामिल कर लेते हैं आप सभी की पसंद। फिल्म का नाम है एतबार, गायक कलाकार हैं आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह, गीत हसन कमाल ने लिखा है और संगीत है बप्पी लहरी का। और इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजा है। कस्बा वराडा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब सिंह राहुल, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी चांदनी और नंदिनी कुमारी, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद, सिद्धार्थ नगर दरियापुल बाबली से इसी गीत से जुड़ चुके हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा और बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, चंडीगढ़ से हैं सतीश अनीजा और बिमला अनीजा और फजल का पंजाब खेड़ा परिवार के सदस्य हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी और टिवांशी खेड़ा। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म एतबार का ये गीत।

0: श्रोताओं, सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश में अपनी पसंदीदा फरमाइश भेजने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। यहाँ प्रतिदिन एक विशेष पोस्ट डाली जाती है। अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा गीत, अपना नाम, पता और अन्य आवश्यक जानकारी लिखकर कमेंट करना है। आपके द्वारा भेजी गई फरमाइश को हम इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ध्यान रखें, ये पोस्ट प्रतिदिन सुबह 10 बजे हमारे सोशल मीडिया पेज पर डाली जाती है और शाम 5 बजे तक प्राप्त होने वाली फरमाइशों को ही कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। तो देर किस बात की, समय का ध्यान रखते हुए अपनी फरमाइश फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें अवश्य भेजें। आपकी पसंद को हम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश में ज़रूर स्थान देंगे। और अब इसी गीत के साथ, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश रैना को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या और इवनिंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी

प्रत्याशी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन

0: ताइडी ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Navarno in Kolkata, Mr. Vaishnav said 14,205 crore rupees has been

अभी आपने आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में फिल्म दहलीज का गीत लिखा। शब्द रचना हसन कमाल की थी और संगीत रवि का था। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में लीजिए आप सुनिए फिल्म देश परदेश का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत राजेश रोशन का है।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मुकेश और हेमलता की आवाजों में फिल्म विश्वास का गीत। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

मुकेश और हेमलता के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। ये कार्यक्रम

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना

0: कोरोना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से एक से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है। गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में, जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकार।

0: कर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए, इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी। तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था। उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत, यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा नहीं, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्हें कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भैया क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का हमें हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और फिर कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उसका प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी, उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
2: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को,

0: निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगे आएंगे, वो आते हैं। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है मुझे बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ के साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए, कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, जो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने में मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है सेंसिटिविटी का लेवल है वो डिफरेंट है।

0: वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है जी, इसका वही महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे सर। सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात ये कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था
3: जी,
4: उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
3: जी,
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
3: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
4: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
3: जी।
4: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता? आज हमको दिखाता है कि खेत में

हल जोतता हुआ किसान जो है वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है और खेत में अनाज बोते हुए भी बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा

0: कलाकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
1: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेषकर कि इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
0: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
1: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के टेक्नीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी

अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सान्निध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rishikesh Gangurde, Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुड़े इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। बियॉन्ड हिज वोकल प्रोवेस, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुति बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी

द हार्मोनियम बाय श्री मकरंद करवंडीकर. ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा. द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल. दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशंस इन तीन ताल.

0: गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवारा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुर्डे विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18

0: In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
1: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।